प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण उसे छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है। भिन्न भिन्नाते रहने वाले पुरुषों के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे कभी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दुभर हो उठना और असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम कार्य करते रहें, जो कुछ हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें, अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश की उपलब्धि होगी।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2024 जुलाई महीने का सोमवार दिन और तारीख है 20। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक गैर अतः और तकनीकी अभियंता गोलो कालो।

चलिए दोस्तों अब नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:10 सुनिए कालो दैनिक न्यूज अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे जहां योगा एक्सरसाइज हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए आप बताने दैनिक न्यूज 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एंगेजिंग अंदाज में। 7:45 सुनिए तागिन दैनिक न्यूज।

7:40 पेश है सदाबहार सूदिंग म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी राष्ट्रीय समाचार में। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज।

9:05 रहेगा इंग्लिश न्यूज, 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्मी गपशप जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट के बातें। 10:10 शुरू होगा रेडियो ऑन डिमांड जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से जहां होती है दिल से दिल के बात। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

0: दोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन तीन देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रिकेल। The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings, a report.
2: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest march and procession in the New Delhi district in view of Parliament session beginning today. Madhya Pradesh Cabinet has approved the Uniform Civil Code UCC Bill during a special meeting held at Jagdishpur, a historic town near Bhopal. Addressing a press conference, Chief Minister Mohan Yadav said that the UCC will provide equal opportunities and rights to all communities, and this law is a major step in that direction. He said the UCC Bill does not violate the fundamental rights of the

नमस्कार दोस्तों, इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ। दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत, पेश है भक्ति गीत।

दोस्तों ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत दी होगी। यह आकाशवाणी टानर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होते हैं दिल से दिल की बात। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे कालू पाशा में समाचार।

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कालो भाषा में हमारा खास समाचार बुलेटिन। और अब वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा और ताजगी से भरे प्रोग्राम का। जी हाँ, सुबह सवेरे आप सभी प्यारे श्रोताओं को एक बार एक बेहद खूबसूरत और सुनहरी और सेहतमंद सुबह मुबारक। उम्मीद है आपकी ये सुबह एक नई उमंग और नए जोश के साथ शुरू हुई होगी। दोस्तों, पता है हर नया दिन हमारे लिए एक कोरा कागज होता है और इस कागज पर हम अपनी अच्छी आदतों से एक बेहद खूबसूरत जिंदगी की कहानी लिख सकते हैं। और जब बात दिन की शुरुआत की हो तो हमारी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसीलिए तो आपकी ये दोस्त हर दिन लेकर आता है ढेर सारी ऐसी बातें जो आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाए, आपको फिट भी रखे। तो चलिए इस प्यारी सी सुबह का स्वागत करते हैं एक बेहद ही जोशीले और खूबसूरत गीत के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुबह सवेरे। दोस्तों, अक्सर जब हम योगा या एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वही पुराने आसन हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग बात करेंगे। सेहतमंद रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आप घंटों मुश्किल आसन करें। क्या आपने कभी सूक्ष्म व्यायाम के बारे में सुना है? इसे हम माइक्रो एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। हमारे शरीर के छोटे छोटे जॉइंट्स जैसे हमारी उंगलियां, कलाइयां और गर्दन, इन्हें सुबह सुबह हल्का सा रोटेट करना हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अगर आप दिन भर कंप्यूटर पर बैठे हैं या खेत बाड़ी का काम करते हैं तो सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने जॉइंट्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को तुरंत बूस्टर देता है। और चलिए एक और कमाल की चीज बताती हूँ, ट्रैटिक क्रिया या आई योगा। सुबह उठकर किसी एक चीज पर या सुबह के हल्का सूरज पर बिना पलके झपकाए फोकस करिए।

जब तक आंखों में थोड़ा पानी ना आ जाए। आजकल स्क्रीन देख देख कर हमारी आंखें थक जाती है और ये सिंपल सी प्रैक्टिस आपकी आईसाइट और फोकस दोनों को बेहतर बनाएगी। चलिए इस यूजफुल टिप के बाद वक्त हो चला है एक और बेहद खूबसूरत गाने का।

दोस्तों आप ही मेरे साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे में। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं होता बल्कि अपने शरीर के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना होता है। आज का मेरा सबसे बड़ा हेल्थ टिप्स पता है क्या है? वो है माइंडफुल वॉकिंग और सर्कैडियन रिदम यानी प्रकृति के चक्रधार चलना। सुबह जब आप वॉक पर निकले तो अपने कानों में हेडफोन मत लगाइए, अपने आसपास की चिड़ियों की चहचहाहट सुनिए, ठंडी हवा को महसूस कीजिए और हाँ अगर हो सके तो थोड़ी देर घास पर नंगे पैर चलिए जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को जमीन के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और आपको पूरे दिन के लिए काम और हैप्पी बनाता है। इसके साथ ही अपनी सुबह की शुरुआत किसी कोल्ड ड्रिंक या सीधे चाय से करने के बजाय हल्का गुनगुना पानी पीकर करें। यह आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। सेहत की इन प्यारी बातों के साथ अब वक्त हो चला है हमारे आज के आखिरी गाने का।

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता. और एक दिन चर्च में

0: See? You're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे.
2: दोस्तों ये थे कार्यक्रम सुबह सवेरे. आशा करती हूँ कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा. यह आकाशवाणी ईटानगर का रेडियो एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है. अब आप सुन पाएंगे अब पता नहीं भाषा में समाचार.

0: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम और आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के साथ। लीजिए, अब पेश है आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर जो रोकला सुरो जून फुलो का निखायन अलोका पुयुला तने प्रोग्राम अतामे मिलिंग भई सुरो का तने पुयुलु को इनसी दुसुतुं बियो न्यू दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस एनेक्स हो गवर्नमेंट लुमुनसुन सेशन में मुरीमरांपा ऑल पार्टी मीटिंग को ने में मगने मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह चेयर मुगला सु यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू राज्यसभा का लीडर ऑफ द हाउस जगत प्रकाश नड्डाला मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स अर्जुन राम मेघवाला डॉक्टर एल मुरुगन लो मीटिंग में मुबोने मीटिंग मुजाकुला मीडिया सो किरेन रिजिजू पोलिटिकल पार्टी सता में पार्लियामेंट में आया फंक्शन मुदोपा लुकुलुपे समापा यन यम्यापा लुस्ताला हल्लुपाने मो मुनसुन सेशन में सलोक मुरीला सो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन अतामी लुसला हो पास मकिंदो लुकोदो ओ अगस्त 13 अलो सो से का सेशन में मजाकेन रोकू मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर ओजिंग तासिंग बुयो लेखियो का खिनिया स्पोर्ट्स एरिना सो 6th स्टेट लेवल इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2026 के ओपनिंग सेरेमनी में इमो इनोग्रेट मुकोबुने केदरिंग सो मिनिस्टर बुयो स्पोर्ट्स खेली लुमी मेडल पैदू पाकों देखेमा सी डिसिप्लिन तामो टीम वर्क ला हेन जो मित्र आयगुदू लहा लुकोने ओ खेल में अतामी कोच हो अतो मुलाजा में मुकातो या लहा लुपाने ओ टीम मैच ओपोनेंट्स कोचेस ला हो ऑफिशियल अतामी रिस्पेक्ट दिला खेल दो पा तोनसर बने सिंह का चैंपियनशिप पा खेली आला अरुणाचल प्रदेश हो के अलियापुए ला पी नी टीम ला लंगे पाई एथलीट्स लो अंडर 15 ला अंडर 19 मिलो बोला यम का कैटेगरी सो खेंकी दो ला लुको दो वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट सोबियो बिचम कले लुपा का कदी दो कोसो म्यू हिंगे लीलाकुम पा दोकान में एनडीआरएफ लोरेस की मुबने लालुको दो मुनसुन को मुदोर हो तोला होकले ये से अलुंपा चाको हो कमियो इंगे लीलाकुम पामुतोला ओ डीएसपी हेडक्वार्टर्स लो इन्फॉर्मेशन पाइला डिस्ट्रिक्ट डिसेस्टर मैनेजमेंट ऑफिसर लो नुब्यापा एनडीआरएफ रेस्क्यू टीम में लोकेशन सो पताबुने लालुको दो हो कमियो लुका आर्मिया दोर्जी देसीसो लाइगो खुंजुजू हो ग्लो सिदासो लामो लो आइडेंटिफाई मुबने लालुको दो ओ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक अतामी मुदोदोमी सोकले ये से अब चाको इमादो पालाहा लुपादो दिवांग वैली का डिप्यूटी कमिश्नर बेकिर न्योराक लुबुयो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दईपा एमोलीला मिपिसो इको टूरिज्म रिसोर्ट प्रोजेक्ट में काका लमग्ने सो डीसी बुयो प्रोजेक्ट लो में आया क्वालिटी पा पुदोपा ओम्योदो मुजादो पा लालुपाने मो टूरिज्म में बूस्ट मुको लोकल अतंपा इंगो मुको संदो किंदो हो बोदर लेम्बालू तो साकिंदो लालुक सो प्रोजेक्ट लो मिलान वो एजेंसीज लु प्रोजेक्ट लो में अगस्त 2026 लो मुजादो पामोलो टारगेट मुक्तो लालुकोने तो दिसीलू मिपी का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मित्रो काबुला हेल्थ केयर सर्विसेस में रिव्यू मुबने डिपार्टमेंट अतामी मोलू बाउंड्री वॉल ला बिल्डिंग त्रोपुयांबु दो पाला लुपने इंडियन आर्मी के गजराज कोर्प्स लुबियो टक्सान गुंपा अरुंसो ग्रोलेटिंग सो ग्रैंड याक मेला प्रोग्राम कोने में ऑर्गेनाइज मुगने प्रोग्राम सो जनरल ऑफिसर कमेंडिंग ब्रोकपा हालू अतांका मेंबर्स अतामी ब्लैंकेट खेबने ओयाक मेला का आन अतानला इसुतेन लोकल अचीवर लो मित्रो असाबुला मुगने

अरुणाचल प्रदेश किक बॉक्सर सोनंग जुम्बा भयो श्रीलंका का कोलंबस मुग्न इवेंट सो कार्माफाइट लीग केएफएल एट वर्ल्ड स्ट्रोवेट चैंपियनशिप टाइटल मिमो पाई बने सोशल मीडिया और चीफ मिनिस्टर पेमा खांडूला डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाउनामे लुसोनाम के अचीवमेंट पर कॉन्ग्रेचुलेट मुबने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो पपुमपारे मी खताला अरुणाचल प्रदेश के निखाई डिस्ट्रिक्ट पर येलो अलर्ट मुलिम्बुदो सो निखाई डिस्ट्रिक्ट लुओ दोयाम ब्योला मुदूर किंदो लालुकोदो टू टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट पीबी सिंधु बुयो जापान ओपन टूर्नामेंट टाइटल मी पाई बने मो जापान के लोकल फेवरेट थ्री टाइम वर्ल्ड चैंपियन अकेन यामागुची मी खेमिला जापान ओपन टूर्नामेंट टाइटल पाइबो कप्योजा इंडियन शटलर पाई दोकु 31 इयर्स के सिंधु यंग एपले के अबा सुपर 750 टूर्नामेंट होकर ट्रॉफी जीती बुदो सैटरडे सो मायामी स्टेडियम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 के थर्ड प्लेस मैच सो इंग्लैंड लु फ्रांस मी 6-4 पर खेमी बिला ब्रॉन्ज मेडल मी सिक्योर मुबने ललुको दो सिरो का तनु पुयुलु को सनहम कने सिस्नु नु तनिबुसी आयो तमी तपकेंडो

गुड मॉर्निंग ईटानगर आकाशवाणी अरुण एफएम पर आपातानी डायरेक्ट न्यूज के बाद आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट मॉर्निंग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी दोस्त और आरजे याजू। नई उम्मीद, नई रोशनी और ढेर सारी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का सफर। आज तारीख है 20 जुलाई, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इतिहास के पन्नों में और देखते हैं कि आज के दिन दुनिया में क्या कुछ खास हुआ था।

दोस्तों, अगर बात करें ग्लोबल हिस्ट्री की तो आज का दिन पूरे मानव जाति के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन रहा है। 20 जुलाई 1969 के वो दिन था जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने मून पर लैंड किया और नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। स्पेस में एक और बड़ी कामयाबी 1976 में आज ही के दिन यूएस का वाइकिंग 1 स्पेसक्राफ्ट मिशन मार्स पर सक्सेसफुली लैंड हुआ था और उसने मार्स की सतह की पहली क्लियर फोटो धरती पर भेजी थी। आज पूरी दुनिया इंटरनेशनल चेस डे मना रही है। आज ही के दिन साल 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना पेरिस में हुई थी, तो सारी चेस लवर्स को बधाई। माउंट एवरेस्ट की सबसे पहली चढ़ाई करने वाले सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे को उनकी इस बेमिसाल कामयाबी के लिए बकिंगम पैलेस में ब्रिटिश रॉयल्टी द्वारा सम्मानित किया गया था। चलिए स्पेस और एडवेंचर के इस सफर के बाद सुनते हैं एक शानदार गाना, फिर लौटेंगे इंडिया की हिस्ट्री के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अरुण एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त और आरजे याजू। ग्लोबल हिस्ट्री के बाद अब बारी है हमारे प्यारे भारत के इतिहास को देखने की। आज के दिन भारत में क्या बड़े इवेंट्स हुए, आइए जानते हैं। आज ही के दिन साल 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पार्टीशन का आधिकारिक ऐलान किया था। इस फैसले ने पूरे देश में आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया था। इंडियन डेमोक्रेसी के लिए आज का दिन सुनहरा अक्षरों में लिखा है। 20 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवसिंह पतिल जी ने इलेक्शन जीतकर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया था। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार तिरंगा लहराने वाले तेंजिंग नोर्गे शेरपा का जन्मदिन भी इसी महीने के आसपास सेलिब्रेट किया जाता है और उन्हें भारत के सबसे बड़े हीरोज में से एक माना जाता है जो कई माउंटेनियर्स के प्रेरणा स्रोत है। साल 1969 में आज ही के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा आर्थिक कदम उठाते हुए देश के 14 बड़े प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइजेशन पर साइन किए थे जिससे बैंकिंग आम लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों इतिहास की बातें तो हो गई, चलो अब मूड को थोड़ा और फ्रेश करते हैं इस अगले गाने के साथ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अरुण एफएम का मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट शो। चलिए अब नजर डालते हैं हमारे अपने राज्य की आज की बड़ी खबरों पर जो छपी है दी अरुणाचल टाइम्स की आज के एडिशन में। आज हेडलाइंस में काफी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए डिटेल्स में जानते हैं। दी अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइंस है, थ्री स्ट्रैंडेड लोकल रेस्क्यू आफ्टर आवर्स लॉन्ग ऑपरेशन। सबसे पहले एक बड़ी और राहत बड़ी खबर वेस्ट कमेंग डिस्ट्रिक्ट से है। बिचोम रिवर में बाढ़ और तेज बहाव की वजह से तीन लोकल लोग एक छोटे से रिवर आइलैंड पर फंस गए थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर रिस्पांस पर्सनल ने मिलकर एक घंटों लंबा लगभग 60 घंटे का स्विफ्ट ओवरनाइट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सुबह सुबह उन तीनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हमारे इन जज्बाज रेस्क्यूअर्स को बड़ा सलाम। टीएमपी की अर्जेस कालो कम्युनिटी टू डी एस्केलेट इंटरस्टेट बाउंड्री टेंशन। अगली खबर बाउंड्री इशू को लेकर है। मिसिंग कम्युनिटी के स्टूडेंट यूनियन ताकाम मिसिंग पोरिन के बांग ने कालो कम्युनिटी से अपील की है कि वो इंटरस्टेट बाउंड्री के पास चल रहे टेंशन को डी एस्केलेट करे यानी कम करे। उन्होंने दोनों साइड से आपसी भाईचारा शांति और सामंजस्य बनाए रखने की गुजारिश की है ताकि कोई विवाद न बढ़े।

Iring assures to take up demand for new school building. Pasighat ke MLA Ninong Iring ne local logo ko pura aashwasan diya hai ki wo aane wale assembly session ya sahi authorities ke samne naye school building ki demand ko majbooti se uthayenge. उन्होंने कहा कि बच्चों के एजुकेशन और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. जोम्बा बिकम्स फर्स्ट एवर कर्मा फाइट लीग चैंपियन. स्पोर्ट्स के मैदान में अरुणाचल के लिए बेहद गौरव का पल. हमारी लड़ाकू बेटी तवांग बोर्न किक बॉक्सर सोनम जोम्बा ने श्रीलंका के कोलंबा में इतिहास रच दिया है. उन्होंने श्रीलंका की चतुरी सिरिवर्धना को हराकर पहली बार कर्मा फाइट लीग वर्ल्ड स्ट्रोवेट चैंपियन का किताब अपने नाम कर लिया है. चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने भी उन्हें इस शानदार जीत पर बधाई दी है. लैप विंस ब्रॉन्ज इन एशियन कैडेट्स एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप. और स्पोर्ट्स से एक और बड़ी खुशखबरी. जॉर्डन में चल रहे एशियन कैडेट्स एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप में अरुणाचल के जुरोका केंतू लैप ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाते हुए देश और स्टेट के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है. हमारे खिलाड़ी सच में कमाल कर रहे हैं. चलिए इस गर्मागर्म लोकल खबरों के बाद वक्त हो चला है आज के आखिरी और सबसे बेहतरीन गाने का.

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी अरुण एफएम पर आप सभी सुन रहे थे तागिन डायलेक्ट में राज्य और देश दुनिया की खबरें। और अब घड़ी इशारा कर रही है कि एक ऐसे सफर की तरफ जहां वक्त थोड़ा ठहर जाता है और यादें गुनगुनाने लगती है। जी हां, शुरू हो चला है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सदाबहार। मैं हूं आपकी साथी आरजे याजू। आज की इस प्यारी सुबह को और भी सुनहरा बनाएंगे गुजरे जमाने के वो नगमे जो आज भी हमारे दिलों में तारोताजा है। तो चलिए शुरू की सुनहरे सफर की शुरुआत करते हैं उन दिनों की एक बेहद प्यारी आवाज और खूबसूरत धुन के साथ।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं सदाबहार सिर्फ आकाशवाणी अरुण एफएम पर। पुराने गानों का लुफ्त तो हम उठा ही रहे हैं, पर चलिए अब जान लेते हैं कि आज हमारे राज्य का मौसम क्या करवट लेने वाला है। आईएमडी अरुणाचल के अनुसार आज मौसम काफी दिलचस्प रहने वाला है। राज्य में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। आईएमडी के मुताबिक आज राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना होगी कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स, खासकर जो फुट हिल्स और रिवर वैलीज के पास है, वहां पर गरज चमक के साथ तेज बहाव वाली बारिश की भी संभावना जताई गई है। कुछ सेंसिटिव हिली टेरेन्स और हाई ऑल्टीट्यूड डिस्ट्रिक्ट में सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम रहेगी, इसीलिए सुबह सुबह ट्रैवल करने वाले ड्राइवर्स थोड़ा सावधान बरते हैं। साथ ही तेज हवाएं चलने की भी गुंजाइश है, जो मौसम को थोड़ा ठंडा बनाए रखेंगे। मौसम की इस ठंडे के बीच चलिए दिल को थोड़ी और गर्मी देते हैं ये अगले गीत के साथ।
1: लेटेस्ट अपडेट्स

दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका सदाबहार में। हमने पूरी अरुणाचल का हाल तो जान लिया, अब आइए बात करते हैं हमारी कैपिटल सिटी ईटानगर के मौसम की, जो आज काफी सुहाना रहने वाला है। आईएमडी अरुणाचल के अनुसार आज ईटानगर का मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, यानी मौसम में एक प्यारी सी ठंडक बनी रहेगी। ईटानगर और इसके आसपास के इलाकों में आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दिन के समय या शाम होते होते शॉर्ट स्पेल ऑफ रेन यानी रुक रुक कर तेज बुछारे पड़ने की पूरी संभावना है। रिलेटिवली ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से बारिश के बाद थोड़ी उमस हो सकती है, पर कूल ब्रीज चलने से शाम बेहद सुहानी हो जाएगी। तो अगर आप घर से निकल रहे हैं तो छाता साथ रखना बिल्कुल ना मत भूलिएगा। मौसम का हाल तो मिल गया, अब वक्त है सुरों की बारिश में भीगने का। सुनिए ये अगला गाना।

0: दोस्तों मौसम सुहाना है और गाने उससे भी बेहतरीन। दिन भर ऐसे ही यादों के जरखों में खो जाने के लिए और पुराने गीतों का आनंद लेने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ आपके फेवरेट शो सदाबहार में आकाशवाणी अरुण एफएम पर। दोस्तों ये था कार्यक्रम सदाबहार ये आकाशवाणी का ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
3: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
4: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से ये अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें।

0: एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
1: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
0: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमेरिका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने

0: बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
1: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की

0: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी अरुण एफएम पर अभी अभी खत्म हुई है दिल्ली और शिलांग की आधिकारिक खबरें और अब वक्त हो चला है एक ऐसी आवाज का जो जुड़ती है हमें सीधे आपकी जिंदगी और आपके शहर से। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद खास एजुकेशनल और इंटरैक्टिव शो हेलो ईटानगर में।
1: हेलो ईटानगर।

मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू। दोस्तों, हेलो ईटानगर में हम हर दिन लेकर आते हैं कुछ ऐसी जानकारी जो न सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ाए बल्कि आपको हर दिन कुछ नया सिखाए। और आज का दिन तो वाकई बड़ा डिजिटल, मेंटल और हिस्टोरिक है, क्योंकि आज पूरी दुनिया मना रहा है इंटरनेशनल चेस डे। तो चलिए, दिमाग की घोड़े दौड़ाने से पहले शुरू का एक दौड़ा शुरू करते हैं इस पहले शानदार गाने के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो ईटानगर सिर्फ आकाशवाणी अरुण एफएम पर और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजु। आज इंटरनेशनल चेस डे है दोस्तों और हम बात कर रहे हैं इस दिमागी खेल के इतिहास की। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा, चेस का रिश्ता हमारे प्यारे भारत से सदियों पुराना है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो महाभारत के दौरान जो द्यूत या चौपाड़ खेला गया था वो इसी खेल का एक प्राचीन रूप माना जाता है, जहां स्ट्रेटजी और दिमाग के का इस्तेमाल होता था। हिस्टोरिकली साल 6 सेंचुरी में गुप्त एम्पायर के दौरान इस खेल को इंडिया में चतुरंगा कहा जाता है। चतुरंगा का मतलब होता है सेना का चार अंग, यानी इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स और चैरियट। यही खेल आगे चलकर पर्शिया पहुंचा, जहां इसे शतरंज कहा गया और फिर यूरोप पहुंचकर ये बन गया मॉडर्न चेस। तो है ना ये प्राउड फीलिंग।

कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान केल हमारे ही देश के देन है। चलिए, इस शानदार ज्ञान के बाद वक्त है आपके मूड को थोड़ा और बेहतर करने का। सुनिए ये अगला गाना।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: एक बार फिर स्वागत है आपका हेलो इटानगर में. हम बात कर रहे हैं चेस की. दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि 20 जुलाई को ही इंटरनेशनल चेस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन साल 1924 में पेरिस में फिदी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी. अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो हमारे देश ने दुनिया को ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद से लेकर आज के यंग सुपरस्टार आर प्रगनंदा जैसे लेजेंड्स दिए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तिरंगा लहराया है. स्टूडेंट्स के लिए चेस खेलने के कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये खेल बच्चों की रियल लाइफ में सही डिसीजन लेना सिखाती है. दूसरा है फोकस और मेमोरी. चेस खेलने से कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ती है. तीसरा है पेशेंस. ये खेल सिखाता है कि हर चाल चलने से पहले सोचना कितना जरूरी है. तो तानाहर के मेरे दोस्तों, आज ही के दिन अपने फोन पर स्क्रीन टाइम कम करिए और चेस बोर्ड पर दिमाग दौड़ाना शुरू करिए. चलिए इस बात पर सुनते हैं आज का आखिरी और बेहद बेहतरीन गाना.

दोस्तों दिमाग को मिली होगी थोड़ी नॉलेज और दिलों को मिले अच्छे गाने। हेलो ईटानगर के सफर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपने इस सेगमेंट को एंजॉय किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में अपना सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति न तो मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या ज्यादा व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। कल भोपाल के निकट जगदीशपुर में हुई विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी विधेयक से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक का मसौदा तैयार करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद काश देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने राज्य के सभी जिलों और संभागों के साथ व्यापक परामर्श किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सैंडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवो भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। अमरीका ने लगातार 9वीं रात ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता रहा है। अमरीकी हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर एक परिचर्चा प्रकाशित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड विश यू एन अमेजिंग मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। लेकर हाजिर हूँ म्यूजिकल दिल लगी जहाँ ढेर सारी बातें होंगी और एंजॉय करेंगे एक से बढ़कर एक सॉन्ग। कुल मिलाकर माहौल होगा म्यूजिकल और होंगी ढेर सारी बातें भी, तो बने रहिए साथ और एंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी अरुण एफएम पर अभी अभी खत्म हुआ हुई है दिल्ली से आने वाली देश भर की बड़ी खबरें। और अब वक्त हो चला है ग्लैमर मसाला ढेर सारी बॉलीवुड चर्चा का। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो फिल्मी कपशप में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे याजू। अगर दोस्तों आप भी हैं फिल्मों के दीवाने तो अगले कुछ मिनट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस की, बड़े अनाउंसमेंट की और हाल ही में हुई नेशनल फिल्म अवार्ड्स के ढेर सारे किस्से। तो चलिए इस फिल्मी सफर की शुरुआत करते हैं इस साल की सबसे जोरदार हिट के गाने।

वेलकम बैक फिल्मी दोस्तों, सुन रहे हैं आप फिल्मी गपशप सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अरुण एफएम पर। सबसे पहले और सबसे फ्रेश खबर आ रही है 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स के मैदान से। कल ही इन अवार्ड्स का आशिकारिक ऐलान हुआ है और बी टाउन में खुशी का माहौल है। यामी गौतम और कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्मों के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस का सम्मान मिला है और दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए इसे एक सपना सच होना बताया है। इस बार आर्टिकल 370 और अमारन ने नेशनल अवार्ड्स में सबसे बड़ा दंका बजाया है। लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने अपने नेफ्यू जीवी प्रकाश कुमार को उनके तीसरे नेशनल अवार्ड पर दिल से बधाई दी है। के बाद है दोस्तों, सही टैलेंट को सम्मान मिलना ही चाहिए। आइए इस बड़ी खबर की बात सुनते हैं एक और सुपरहिट नगमा।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

नहीं आरजे याजू दोस्तों, थिएटर का माहौल इस वक्त पूरी तरह गर्म है। अजय देवगन की कॉमेडी ड्रामा दमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और ये फिल्म अब 125 करोड़ का माइलस्टोन क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर कॉमेडी वेलकम टू द जंगल ने अपने 23 दिन पूरे कर लिए हैं और फिल्म 190 करोड़ के आंकड़े की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि मल्टीप्लेक्सेस में क्रिस्टोफर नॉलन की हॉलीवुड फिल्म दी ओडिसी से इससे थोड़ी टक्कर मिल रही है, पर बॉलीवुड का जलवा बरकरार है। चलिए इसी बॉक्स ऑफिस के धमाके के साथ सुनते हैं एक और जोरदार गाना।

दोस्तों बात करते हैं उस फिल्म की जिसका इंतजार पूरे देश कर रहा है, नितेश तिवारी की रामायणा। सोशल मीडिया पर इस वक्त सिर्फ एक ही इवेंट की चर्चा है जहां रणबीर कपूर, सई पल्लवी और सुपरस्टार यश एक साथ एक ग्रैंड इवेंट में नजर आए। इस इवेंट में सनी देओल ने सरप्राइज अपीयरेंस देकर सबको चौंकाने पर मजबूर कर दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि केजीएफ स्टार यश ने रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए उन्हें लॉर्ड राम के किरदार में फिनोमिनल बताया है। यश ने यह भी शेयर किया कि उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी हिंदी पर काफी मेहनत की है। फैंस अब ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। चलिए दोस्तों इस ग्रेन अपडेट के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

दोस्तों अब मेरे पास है ऐसी खबरें जो इस वक्त इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। भाईजान यानी सलमान खान के एक लेटेस्ट पब्लिक अपीयरेंस के बाद फैंस उनकी सेहत को लेकर थोड़े फिक्रमंद दिख रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआएं चल रही है। म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी कि जब कंपोजर दनिश बख्शी ने सैयारा गाने की अनपेड रॉयल्टीज को लेकर YRF पर सवाल उठाए थे। हालांकि YRF के रिस्पॉन्स के बाद उन्होंने अपना वो पोस्ट अब डिलीट कर दिया है। और हाँ, रोमांटिक अपडेट्स में निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा के 44th बर्थडे पर एक बेहद क्यूट पोस्ट शेयर किया है उनके रोमांटिक गेटवे से। चलिए इन चटपटी बातों की बात सुनते हैं एक और बेहतरीन फिल्मी गाना।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693।

0: या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ वार्ड चमकाओ IMC क्लीनलीनेस लीग 2026 स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों अगर आप इस अपकमिंग वीकेंड पर थिएटर जाने का प्लान बना रहे हैं तो चलिए आपको बता दूं कि जुलाई की इस आखिरी हफ्ते में क्या नया देखने को मिलने वाला है। थिएटर में एक वाइब्रेंट लव स्टोरी रिलीज हो रही है जिसका नाम है दुल्हनिया ले आएंगी। ये फिल्म बिल्कुल पुराने जमाने के क्लासिक बॉलीवुड स्टाइल में बनी है जो रोमांटिक्स को काफी पसंद आएगा। इसके अलावा आलिया भट्ट और शार्वरी की स्पाई थ्रिलर अल्फा भी अभी तक थिएटर पर जारी है। तो रेडी हो जाइए पॉपकॉर्न के साथ, तब तक के लिए सुनिए ये एक और शानदार गाना।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: एक बार फिर स्वागत है फिल्म गपशप के डिजिटल दरबार में। अगर आप घर बैठकर बिंज वॉच करने का शौकीन है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इस हफ्ते पूरी तरह तैयार है। अमेज़न प्राइम वीडियो पर 24 जुलाई को आ रही है एक मजेदार कॉमेडी सीरीज आदर्श बाल विद्यालय। इसमें बेहतरीन एक्टर के मैनन, अर्चना पूरन सिंह और नवीन कस्तूरिया एक डिसफंक्शनल स्कूल के माहौल में आपको हंसाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसकी कहानी एक ऐसे हेडमास्टर के आसपास घूमती है जो अपने स्कूल को कैम्ब्रिज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहते हैं। के मेनन की एक्टिंग का तो हर कोई दीवाना है। चले इसी बात पर सुनते हैं एक और शानदार गाना।

दोस्तों, ये थी फिल्मी गपशप। उम्मीद है आपको मिला होगा एंटरटेनमेंट का परफेक्ट दोस्त। यह आकाशवाणी चैनल का अरुण एफ एम 103.1 MHz से जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों कहीं मत जाएगा, अभी आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि सुरक्षा कारणों से जनपथ राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी है। कल भोपाल के निकट जगदीशपुर में हुई विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी विधेयक से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाऊ में मालडोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मालडोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मालडोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मालडोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारत वंशियों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मालडोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मालडोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों के खिलाफ समूचे देश में स्वतंत्रता की अलख जगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को एक राष्ट्रवादी साहसी व्यक्तित्व बताया जिन्होंने अन्याय और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इधर दिल्ली में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल।

0: प्रोग्राम का। जी हाँ, ये शो पूरी तरह आपका है। शुरू करते हैं रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।

दोस्तों आकाशवाणी आर एन एफ एम पर अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और अब वक्त हो चला है आज के आखिरी और सबसे खास

दोस्तों, आज सुबह आप सभी ने हमें ढेर सारे मैसेजेस और रिक्वेस्ट भेजे हैं अपने फेवरेट गानों के लिए। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं आज के पहले रिक्वेस्ट पर, जो आई है कर्बी अंगलोंग से। लंकंगसम से हमारे लिसनर टेंशन क्रॉस सुनना चाहते हैं आमिर खान और मनीषा कोइराला की फिल्म अकेले हम अकेले तुम का ये बेहद खूबसूरत गाना। आप सभी के लिए पेश है दिल मेरा चुराया क्यों।

क्या बात है दोस्तों, 90s के इस गाने ने तो रात की शुरुआत एकदम सुनहरी कर दी है। अगली रिक्वेस्ट भी लंकंगसम से ही आई है और इसे भेजा है अथुर और सरो ने। इन दोनों की फरमाइश पर चलिए प्ले करते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म हमको तुमसे प्यार है का एक और सुपरहिट रोमांटिक ट्रैक तेरे इश्क में पागल हो गया है।

0: राणा जी खबर पक्को है, वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर।

0: Attention! Pari Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अगली मैसेज जो हमारे पास आई है माजुली असम से, जिसे भेजा है देवशीष हजारिका ने। इन्होंने एआर रहमान साहब का एक ऐसी मास्टरपीस चुना है जिसे सुनकर आराम मिल जाता है। फिल्म दिल से उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में, चलिए सुनते हैं ए अजनबी।

दोस्तों अब बारी है अगले गाने की, जो एक बार फिर असम से है, रिक्वेस्टेड हमारे एक प्यारी लिसनर की तरफ से है। सलमान खान और करीना कपूर की फिल्म बॉडीगार्ड का ये गाना हर लवर का फेवरेट है। सुनिए तेरी मेरी प्रेम कहानी।

दोस्तों चलिए आगे बढ़ते ही रेडियो ऑन डिमांड के इस सफर में, क्योंकि हमारे पास अगले गानों की लिस्ट भी आ चुकी है। अगली रिक्वेस्ट हमें भेजी है गीता ने, जो असम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने चुना है साल 2000 का एक ऐसा हिट ट्रैक जिसे सुनते ही लोग झूम उठते हैं। बॉबी देओल और रानी मुखर्जी की फिल्म बिच्छू से विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में पेश है प्यार तू दिल तू जान तू।

दोस्तों, और अब वक्त हो चला है आज के इस सिलसिले का दूसरा बेहद जज्बाती गाने का। इसे रिक्वेस्ट किया है हमारे रोज के साथी यानी संकी पार्क जानगर से हमारे डेली लिसनर आरव ने। आरव, हर बार की तरह इस बार भी वही सुनहरा और दिल को छू लेने वाला नगमा सुनना चाहते हैं। फिल्म बॉर्डर से सोनू निगम और रूप कुमार राठौर की आवाज में सुनिए और महसूस कीजिए घर का भाव के।

0: दोस्तों इस गाने को छोड़कर जाने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहली प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक गई रहते और तकनीक अभियंता गोलू कालो। दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे दुनिया के साथ अरुण एफएम पर। तो बने रही तो अब अपनी आरजे याजू को दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 MHz से आप सुनते रहिए अरुण एफएम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। तो दोस्तों जाने से पहले मैं इस गीत को आप सबके लिए छोड़ के जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप इस गीत का लुत्फ उठाएंगे।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी। पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।
2: तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के सत्र में सदन की 19 बैठकें होंगी। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। संसद परिसर में श्री मोदी ने मॉनसून सत्र को उत्पादक बनाने पर बल दिया।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों,

0: पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं तथा मर्यादा का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। सोशल मीडिया पर श्री बिरला ने कहा कि विधायी और अन्य संसदीय कार्यों का सुचारू संचालन और अधिकतम कार्य निष्पादन सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बिरला ने कहा कि इससे जनता का विश्वास और मजबूत होगा तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं का कद बढ़ेगा। श्री बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो ने बताया था कि सुरक्षा कारणों से जनपथ राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू प्रवासी भारतीयों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। अमरीका ने लगातार 9वीं रात ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है। अमरीकी हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पंजाब सरकार ने मनरेगा से विकसित भारत जी रामजी योजना में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। ग्रामीण श्रमिकों के रोजगार के अवसरों की सुरक्षा और राज्य में विकास कार्यों के निर्बाध निष्पादन को भी सुनिश्चित किया गया है। पहली जुलाई से पंजाब में लागू हुई विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत वेतन के लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि पहले ही प्राप्त हो चुकी है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। अतिरिक्त समय में गोल करके फेरान टेरिस ने अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament has begun. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. Now, we'll take you live to the session.
3: Kulam, Kerala mein hua. Shri Pyarelal Sangwar, Uttar Pradesh ke Ghatampur Sansadi Nirvachan Kshetra se 13vi Lok Sabha ke sadasya the. Isse purve do karyakaron ke liye Uttar Pradesh Vidhan Sabha ke sadasya bhi rahe. श्री प्यारे लाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने छह

जी हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की दूसरी प्रसारण सभा में। दोस्तों, इससे पहले प्रसारण सभा में आप बने हुए थे RJ याजो के साथ। उम्मीद करती हूं RJ याजो के साथ आपका आज का सफर बहुत ही मनोरंजक और सुहाना रहा होगा। अब इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज की दूसरी प्रसारण सभा। और इस सफर में आपके साथ रहूंगी मैं, आपकी रेडियो साथी RJ दुनिया। दोस्तों, सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगजंग तथा तकनीकी अभियंता तिम। रोजाना की तरह आज भी सभा में हम आपके लिए पेश करेंगे धैर्य ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहले कार्यक्रम के साथ, जो है फिल्मी लहर।

जहाँ दोस्तों इस कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फिल्म लहर। और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं वो फिल्मी गाने जो कभी मुस्कुराहट बन जाते हैं तो कभी प्यार की धुन। आपने शायद नोटिस किया होगा कि फिल्मों के ये गाने कभी लाइन बाय लाइन हमारी जिंदगी के सीन्स को बयां करते हैं, कभी किसी पुरानी गली से गुजरती याद दिला देते हैं और कभी कभी किसी अनजानी खुशी को दिल से जोड़ देते हैं। और ऐसे ही खूबसूरत से गीत के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सुनते हैं मौसम फिल्म से रब्बा में तुम मर गए हो, राहत फतेह अली खान की आवाज में।

दोस्तों आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, माय नेम इज खान फिल्म से सजदा। इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा ने।

0: इसी के साथ ही दोस्तों फिल्म लहर कार्यक्रम समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ इन खूबसूरत हिंदी फिल्मी गानों के साथ हमने आप सबका भरपूर मनोरंजन किए होंगे। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों अब आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम। तो चलिए अगले 30 मिनट हिंदी फिल्मी गानों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और एंजॉय करते हैं कुछ सूदिंग वेस्टर्न सॉन्ग्स।
1: Hello everyone, this is Kamsan, your host for today, and welcome back to Western Music Program only on Akashwani Itanagar. Today's session explores a more delicate side of emotion. It's about love, loss and longing. These are the songs that speaks of relationship in all their complexity. It's about moments of joy, separation, reflection and healing. So let's start today's session with a song that feels warm and grounded. It speaks of closeness and affection in a small, in a simple, heartfelt way. Here's Your Man by Josh Turner. Please enjoy.

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 12 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की जीत दिलाई। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक लगभग 0.7% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Shagun Chopra. The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to six of its former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members, including from Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. During the proceedings, Leader of the Opposition Mallikarjun Kharge tried to raise the issue of NEET examination paper leak. However, due to uproar, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan adjourned the House till 12 noon. When the House met after the first adjournment at the noon, the opposition members continued their protests against NEET paper leak. The Rajya Sabha adjourned till 12:30 p.m. Prime Minister Narendra Modi has said that be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings. Mr. Modi said it is a powerful message that the potential and aspirations of the country's youth are boundless as space itself.
1: Monsoon ho ya monsoon satra, agar dono proactive ho, to

0: You freak like you dance, cause you dance like a pro.
1: दोस्तों इसी के साथ ही नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, गीतमाला के इस खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये सुरीली पेशकश हमारे देश के उन वीर जवानों को समर्पित है जो अपने घर परिवार से दूर रहकर हर दिन हमारी सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। उनकी हिम्मत, उनका जज्बा और देश के प्रति उनका समर्पण हम सब के लिए प्रेरणा है। तो आइए कुछ ऐसे गीतों का सफर शुरू करते हैं जो देशभक्ति के रंग से सरोबर हो और हर भारतीय के दिल को छू जाते हैं। शुरू करते हैं राजीव फिल्म से ए वतन, अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। दोस्तों, अगला गाना सुनते हैं जो भारत की रंग बिरंगी संस्कृति, परंपराओं और भाईचारे का एक खूबसूरत जश्न है। और इस गीत को लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मन और प्रीता मजुमदार की आवाजों ने और भी खास बना दिया है। सुनते हैं ऐसा देश है मेरा, वीर ज़ारा फिल्म से।

0: भारत हमको जान से प्यारा है। दोस्तों, आप कार्यक्रम का अंतिम गीत सुन रहे थे रोजा फिल्म से हरिहरन की आवाज में। इसी के साथ ही गीत माला कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ गीत माला कार्यक्रम के सभी गानों ने आपके दिल में देशभक्ति के उन एहसासों को एक बार फिर जगाया होगा और हमारे वीर जवानों को सलाम, जिनकी वजह से हम सुरक्षित रह पाते हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को 2 बार स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा

0: का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी हैं, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वाल्सा विलियम्स। The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to six of its former members who passed away recently. They were Nadendra Bhaskara Rao, Omwati Devi, Sudhanshu Seal, Major General Bhuvan Chandra Khanduri, retired, K.P. Dhanapalan and Pyarelal Sangwar. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When Lok Sabha Speaker Om Birla tried to take up the question hour, the opposition members, including from the Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. When the House met after the first adjournment at 12 noon, the opposition members continued their protest. Amid ruckus, the chair adjourned the House till 12.30 p.m. When the House met after the second adjournment at 12.30 p.m., the opposition members again continued with their protest over NEET paper leak issue. The presiding officer, Dilip Saikia, tried to take up the zero hour, but the opposition members continued their protest. Mr. Saikia said there should be healthy debate in the House and people have sent their representatives to raise important issues. The opposition members did not pay heed to the chair's advice. It led to adjournment of the House till 2 p.m. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. Leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, tried to raise the issue of NEET examination paper leak. However, due to uproar, the protest continued. The chair adjourned the House till 2 p.m. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Mekhwal today introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha. The bill aims to further amend the Supreme Court number of judges.

0: प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मानसून भी प्रोएक्टिव रहे, मानसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे।
1: Union Minister Dr. Mansukh Mandavia has said over 8 crore manuscripts have been digitized under the Gyan Bharatam mission. Replying to supplementaries in the Lok Sabha today, Dr. Mandavia said the Modi government has launched the Gyan Bharatam mission to preserve and digitize manuscripts to facilitate research and make them accessible to the public. Special traffic arrangements have been put in place in New Delhi during the monsoon session of Parliament 2026, which began today. In a social media post, the Delhi Traffic Police said heavy vehicular movement and traffic restrictions are expected in and around the Parliament complex. According to the advisory, the public have been advised to avoid roads such as Rafi Marg, Motilal Nehru Marg, Maulana Azad Road, Parliament Street, Ashok Road, Talkatora Road, Rajendra Prasad Road, Janpath and adjoining stretches, as traffic diversions and congestion are likely in these areas. In Assam, the flood situation has worsened as incessant rain continues across the state, affecting thousands of people in several districts of Upper Assam. Several rivers in Upper Assam are reported to be flowing above the danger level. And with that, we end this news bulletin.
2: श्रोता दोस्तों, अभी आपने सुना आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब दोस्तों, आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: हेलो फरमाइश
4: जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे राधे।
3: जी जी जी, राधे राधे
4: जी। हमारे दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे हैं।
3: जी जी जी, अनूप दा, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ।
4: जी जी
3: जी।
4: तो दोस्ती जिंदगी का खूबसूरत लम्हा है, जिसे मिल जाए तन्हाई में भी खुश, जिसे ना मिले भीड़ में भी अकेला। और मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट श्री भूमि, आसाम से तालुका है।
3: जी जी जी।
4: है ना, क्या हुआ मेरे दोस्त, मैं दो मोबाइल से ट्राई कर रहा था।
3: अच्छा जी।
4: एक मोबाइल है, बड़ा मोबाइल, वो 5G का है, और दूसरी है वो जियो भारत का।
3: अच्छा।
4: लेकिन क्या होता है, मतलब हमारे दोस्त से बातचीत तो जियो भारत से हो रहा है, मेरे साथ आपसे बातचीत हो रहा है जियो भारत में।
3: अच्छा।
4: तो दिक्कत क्या होता है, जियो भारत में थोड़ा बहुत साउंड के कोई प्रॉब्लम है क्या? साउंड का कोई प्रॉब्लम आप दिखाई दे रहा है?
3: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है आपका आवाज।
4: जी जी जी जी,
3: बहुत ही बढ़िया आवाज।
4: ट्राई कर रहा था बड़ा मोबाइल से आपसे बातचीत करने का।
3: अच्छा।
4: भाग्य इतना सुख प्रसन्न नहीं है
3: जी,
4: लेकिन ये आखिरकार आपने मेरा बातचीत सुन लिया।
3: जी जी जी।
4: और आज के गाने का मेरा फरमाइश है, फिल्म का नाम है रात और दिन।
3: ओके।
4: और गाने का बोले से, दिल की गिरह खुल दो, चुप ना बैठो, कोई गीत गाओ, मैं फिल्म में अब कौन है, अजनबी मेरे पास आओ, ऐसे करके गाने हैं।
3: जी, बहुत ही एवरग्रीन सॉन्ग है।
4: बढ़िया गाने
3: जी,
4: है मेरे दोस्त,
3: एवरग्रीन सॉन्ग है
4: जी। कुछ और कुछ दोस्तों को मैं याद करता हूँ।
3: हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी।
4: पहले है हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसका नाम है बके बागेरा जी।
3: बहुत
4: और
3: बहुत धन्यवाद।
4: सेकंडली हमारे नूरी मैडम के लिए, और है लोकेंद्र वर्मा जी उज्जैन मध्य प्रदेश, और है पुरुषोत्तम कुमार जी फ्रॉम कश्मीर, और है अमर सिंह साहू जी, श्रीकांत जोशी जी, विजय सिंह लखेरा जी, और हमारे धर्मनगर से मेरे छोटे भाई अविनाश जी और प्रेमजीत चक्रवर्ती जी के लिए, और ढेर सारे श्रोता अभी सुन रहे हैं। ओहो, एकदम भूल गया, हमारे आसाम के एक अच्छे कलाकार है, उसका नाम है अमल बसुमतारी जी के लिए।
3: हाँ जी,
4: है ना।
3: जी जी जी बिल्कुल।
4: और बहुत अच्छा लगा दोस्त आपसे मेरा बातचीत हो गया, तो चलिए बातचीत को यहीं पे विराम देता हूँ। बहरहाल आज जगन्नाथ रथ यात्रा है।
3: जी जी जी जी बिल्कुल। जय जगन्नाथ।
4: जय जगन्नाथ जी।

0: हेलो फरमाइश.
1: नमस्कार
0: नमस्कार. हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
1: मैं दिनेश शर्मा कैसू
0: जोरहाटर पर. दिनेश शर्मा
1: प्रथम बार फोन कैसू.
0: ओके, कॉल करा कारण बहुत बहुत भाल लगे.
1: की
0: करे आपनी?
1: मैं ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड कोई आसू.
0: अच्छा, ओके ओके,
1: ना ड्यूटी आसले एते घर पालोही, एते बर्तमान घर आसू
0: दिया. अच्छा ओके, आपनी कॉल पर पाले नंबर तो आमार.
1: मैं आपन हरदुरा पर फोन नंबर तो ललो.
0: अच्छा अच्छा, आपनी आमार प्रोग्राम तो हुने न?
1: अच्छा
0: अच्छा, खूब भाल लगे आपनालोग कथा पाती.
1: बहुत भाल लगे.
0: होय होय, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद.
1: बहुत भाल लगे.
0: अच्छा अच्छा, शुनी थाकिब आरु कॉल करी थाकिब आमाक. होय होय होय, ओके, कथा पाती भाल लागिल. कक आजि कि गाना हुनिबा?
1: मय आजा हिंदुस्तानी पडेसी पडेसी गान बजाइ लेबो.
0: ओके, होय होय, बजाइ दिम. आरु कार लगत हुनिब बिचारे एई गाना तो?
1: मय नाम तो हरदोरा भाईपदमुंडा, तापा निजान देखा दीपाल लेखा बंधु बरुआ नीलपल लोरा, तद आपना गुना बुझाइछु.
0: ओके,
1: आपना गंदो সকল কর্মকর্তা তারা অসমবাসী কোনো গান শুনে.
0: ওকে, তো দিনেশ দা কল করার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ. শুনো আপনার গান.

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, शेख जफर हसन, क्वार जिला रोहतास, बिहार से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जफर साहब,
1: आपके दिल से मैं कह रहा हूँ,
0: आपकी
1: मैं इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ कि एक ईटानगर में एक बेहतरीन उद्घोषक से मैं बात कर रहा हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो सुन लीजिए।
0: हाँ जी।
1: कि हमने सीने से लगाया, दिल न अपना बन सका, मुस्कुरा कर तुमने देखा, दिल तुम्हारा हो गया।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: तो बिछड़ने वाली ऊपर वाली बात थी, मतलब क्या रहा।
0: और अगला शेर।
1: दुश्मन है जमाना तो कोई बात है मुझ में, हर शख्स का दुश्मन ये जमाना नहीं होता।
0: हर शख्स का दुश्मन ये जमाना नहीं होता।
1: जी
0: क्या बात है, क्या बात है। शेख साहब कहाँ से ढूंढ लाते हैं आप अपने बेहतरीन शायर। आपकी
1: सर,
0: शायरी और आपसे तो हमें प्यार हो गया है शेख साहब।
1: जी,
0: जी
1: सर से
0: जी
1: भी प्यार हो गया, आपसे भी प्यार हो गया है।
0: जी जी जी
1: आपकी आवाज बहुत अच्छी है सर, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी
1: जी सर, तो
0: जी
1: और फिल्म का नाम मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूँ।
0: जी जी
1: जी, इसे मोहम्मद रफी ने गाया था। तो दो लाइन सुन लीजिए।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: इसका
0: जी जी
1: चल में सजा लेना कलिया,

0: क्या बात है, क्या बात है
1: ये शेर से कच्छ है गाना सर
0: जी।
1: जो सुनाया।
0: जी, इतने बेहतरीन गीत, और आप हमेशा पुराने गीतों को ही फरमाइश करते हैं, तो शेख साहब हम जानना चाहेंगे आपसे।
1: इसकी वजह है बता देता हूँ,
0: हाँ जी, बताइए। जी जी बिल्कुल।
1: क्योंकि मैं पुराना श्रोता रहा हूँ, आपको सही बता रहा हूँ। हमारी क्लब का स्थापना हुआ था केसरी रेडियो सुनाता संघ 1970 में,
0: ओके जी,
1: जिसमें कि दो हमारे श्रोता मर गए, बाकी जिंदा है, सब बाहर में है।
0: अच्छा
1: मैं एक दोस्त और है, बस इस वक्त में 12-14 हजार की जनसंख्या है हमारी बस्ती की,
0: अच्छा,
1: बाकी बाहर में लोग हैं। और जाते 1973 से श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हिंदी सेक्शन कोलंबो 7 ये पता पर,
0: जी,
1: और ऊपर में जो फरमाइश होती थी बिजली प्रोग्राम का नाम अध्यक्ष करते सब जाता था। 1973 से लेकर 2000 तक तो मैं आपको श्रीलंका से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए कि जो श्रोता इसमें आप
0: अच्छा,
1: में भाग ले रहे हैं वो भी श्रीलंका से जुड़े हुए, तो हमारी बात को काटेंगे नहीं,
0: अच्छा जी
1: हमारी
0: जी
1: बात
0: जी
1: इत्तेफाक भी करेंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है
1: उसके
0: जी।
1: बाद तो रोजगार का जमाना था, आकाशवाणी में तो धूम मचाए हुए थे हम उसके हर
0: ओके,
1: जगह, सुबह से
0: अच्छा
1: आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ आपको, रेडियो स्टेशन, सरकारी
0: जी
1: रेडियो
0: जी जी
1: स्टेशन या गैर
0: जी
1: सरकारी या प्लस पोस्टकार्ड का, आपकी पसंद जो है या पसंद आपकी जो भी है आपकी प्रवेश में जुड़ा हुआ हूँ। और पुराना हम है किसी पुराने ही गाने को मैं पसंद करता हूँ,
0: जी, लेकिन
1: पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना,
0: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जी,
1: सबका एक ख्याल नहीं रह सकता है और न बात रह सकती, इसलिए
0: हाँ
1: कि
0: जी,
1: अपना
0: हाँ
1: अपना
0: जी,
1: पसंद होती है। तो ये बोगड़ा साहब है ना
0: हाँ जी, मैं बागरा बोल रहा हूँ। जी,
1: बागा, जी, यार तो भूल जाता।
0: जी, आपको
1: बोल एक
0: याद है
1: बात है कि
0: मेरा।
1: वहाँ के आप रहने वाले हैं और कितना अच्छा आप बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, साफ बोलते हैं, भी तारीफ
0: बहुत
1: की
0: बहुत
1: बात है।
0: धन्यवाद जी, बहुत बहुत
1: जी
0: धन्यवाद।
1: हाँ जी
0: तो किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी तो अब हम बता देते हैं, इसमें एक लाइन आउट जोड़ता हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: जो जो पहला दोस्त का नाम जो मैं ले रहा हूँ वो इंटरनेशनल श्रोता है जी, वो उनका नाम है उस्मान अली अंसारी, अशपुरा मऊ के उत्तर प्रदेश
0: ओके।
1: जी, ये इंटरनेशनल श्रोता है जी। तो
0: ओके,
1: इन्होंने भी इनाम भी जीता है वॉइस
0: अच्छा
1: ऑफ जर्मनी, आपका
0: अच्छा
1: चाइना मतलब कि CRI चाइना रेडियो इंटरनेशनल और शिमर रेडियो, ये 3 जगह से उन्होंने प्राइज भी जीता है
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जी।
0: जी।
1: और उस सम्मेलन भी इनाशुरों का देश विदेश का वो मऊ में करा चुके हैं
0: अच्छा
1: जी। से हमसे रब्ता जो है, अगर इनकी मोबाइल नंबर अगर कोई सोचा चाहे अगर हमसे रब्ता करे तो मैं दे सकता हूँ,
0: जी जी जी
1: विस्तार
0: जी
1: से उस्मान अली अंसारी बताएंगे
0: ओके
1: जी
0: जी जी
1: सर,
0: जी वाह
1: ऐसे
0: वाह
1: दोस्त।
0: वाह
1: और ये एक अब दोस्त जो हमारे हैं, अब देखिए कितना दूर के हमारे दोस्त है, बात तो रोज होते हैं।
0: जी,
1: ये है भदरवा जम्मू कश्मीर के पुरुषोत्तम कुमार, अनवर बिहारी और गणेश दास बंगाली जी, ये भी सब रेडियो स्टेशन से जुड़े हुए हैं
0: ओके। तो आप एक आपके काफी मित्र हैं जो रेडियो से जुड़े हुए हैं।
1: जी।
0: ओके,
1: कहीं से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ
0: नहीं, झूठ की कोई बात ही नहीं
1: जी
0: है। जी, तो शेख साहब, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
0: जी लोकेंद्र वर्मा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: बस बिल्कुल सर जी, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, रेडियो से जुड़े हुए हैं।
0: जी, रेडियो से तो आप काफी सालों से जुड़े हुए हैं,
1: जी सर
0: और
1: जी
0: जी आपसे काफी अच्छी बातें होती हैं रेडियो पर। आप अपने जगह के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं, लेकिन आज हम
1: जी
0: अपने आपकी यादों को थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं।
1: जी पूछिए सर जी,
0: जी जी
1: क्या
0: जी
1: यादों को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं?
0: जी सबसे पहले तो ये बताइए, आप रेडियो से कब से जुड़े?
1: सर रेडियो से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर,
0: 1900
1: बचपन से ही मतलब रेडियो सुन रहा हूँ मैं। 1985 से मतलब बीना का सिबा का गीतमाला आता था, जब से सुन रहा हूँ मैं सर। मेरे पापा को बहुत शौक था रेडियो सुनने का। वो मतलब पुराने दौर में जब वो घर में रेडियो होते थे, बड़े वाले वाल वाले, उस रेडियो सेट में मेरे पापा सुनते थे। और मेरे पापा जब वो सुनते थे तो मुझे भी बचपन में धीरे धीरे वो रेडियो में कैसे आवाज आती है, कैसे सुनने का शौक, मतलब ये शौक कब पैदा हो गया इसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे इससे लगन लग गई हमारी।
0: क्या बात है।
1: और करीब 40 सालों से रेडियो से ज्यादा हो गया है मुझे सुनते हुए, और जब से रेडियो की दुनिया में रह रहे हैं सर।
0: और आप पहले किस तरह से अपनी फरमाइश भेजा करते थे, खट के जरिए?
1: जी सर, पहले मैं, मेरे स्थानीय चैनल है पास में इंदौर आकाशवाणी, वहां पर पत्र भेजता था, तो उसके माध्यम से मेरी पत्र में मतलब फरमाइश पूरी होती थी और मेरी फरमाइश का गीत बजाया जाता था। सन 2000 से पहले से मैं पत्र लिख रहा हूँ, मतलब ये 1985 के बाद में मतलब मेरा धीरे धीरे पत्र लिखना चालू हुआ। इंदौर आकाशवाणी तक ही पहले सीमित था मैं,
0: अच्छा जी,
1: फिर इंदौर आकाशवाणी पर सन 2000 के अंदर मतलब FM रेडियो स्टेशन चालू हुआ था, मतलब उसको FM में कन्वर्ट किया गया था
0: ओके जी।
1: सन 2000 में। विविध भारती इंदौर FM में कन्वर्ट हुआ था,
0: अच्छा
1: वहां पर से एक लाइव टेलीफोन प्रोग्राम चालू हुआ था हेलो फरमाइश का ही, और वो 30 दिन आता था।
0: अच्छा वाह, क्या बात है।
1: हाँ, और वो 11 बजे आता था, बस उसमें बस पहला फोन मेरा उसी आकाशवाणी इंदौर में लगा था। और जब से ये फोन इन प्रोग्राम का जो जरिया चालू हुआ है वो अभी तक निरंतर जारी है। और पहले स्थानीय चैनल पे सुनते थे, फिर धीरे धीरे ये जो रेडियो का डिजिटल हुआ है, रेडियो प्रसार भारती मोबाइल ऐप के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर आ गया है। अब तो और भी तरक्की हो गई है, प्रसार भारती का एक नया ऐप आ गया है, OTT प्लेटफॉर्म। अब इस पर भी सारे आकाशवाणी केंद्र भारत के सुनाई देते हैं। और फिर क्योंकि 2000 सन में यहाँ FM स्टेशन जो चालू हुआ था ना, जैसे इस पर सुनाई देने लगा था उज्जैन में भी, और पहले वहां पर हेलो फरमाइश प्रोग्राम में LP रिकॉर्ड से गाने बजाए जाते थे। देखो पुराना दौर तो रेडियो का LP पे ही था, सारे गाने जो कलेक्शन आकाशवाणी में होते थे वो LP पर ही होते थे।
0: जी, हाँ जी।
1: अब फिर धीरे धीरे ये रेडियो का डिजिटल हुआ, रेडियो बदलता गया, और अब ये डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म पर आ गया है। अब तो मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे मोबाइल के सारे प्रोग्राम आकाशवाणी और रेडियो के सुनते हैं।
0: तो
1: और
0: आप
1: आकाशवाणी भी फिर धीरे धीरे अपग्रेड हो गए, उन्होंने भी अपने कंप्यूटर के माध्यम से जो भी लिसनर फोन लगाते हैं उनके गानों की चॉइस को पूरा करते हैं। और
0: जैसा कि
1: सर हेलो फरमाइश प्रोग्राम का एक दिलचस्प इंदौर आकाशवाणी की बताता हूँ
0: जी
1: कि यहाँ पर LP से जब गाने बजते थे ना, तो पूरी एक टीम रहती थी तैयार उस गाने को खोजने के लिए। हाँ, जैसे
0: जी
1: किसी श्रोता ने लाइव टेलीकास्ट में प्रोग्राम में पसंद किया गाना कि मुझे संघर्ष फिल्म का गीत सुनना है, तो वो संघर्ष फिल्म की LP उनको निकालना पड़ती थी, और उनका वो नंबर कलेक्ट रहता था कि LP कौन से खांचे में, किस नंबर पे, किस सीरीज पे रखी हुई है।
0: बहुत ही मेहनत का काम होता
1: तो
0: था
1: वो बहुत मेहनत का काम होता था सर जी,
0: जी।
1: वो मैं समझता हूँ उस चीज को, बहुत मेहनत होती थी उसके अंदर LP में। और मैं अधिकतर वहाँ गाने पुराने पसंद करता था ताकि थोड़ा समय अपन बात कर सके। जी सर जी, ये तो सब आकाशवाणी है, और आप जितने भी हैं जो आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, सभी की मतलब श्रोताओं के लिए धन्यवाद है आपके लिए,
0: जी
1: के सभी की

0: खाने की चॉइस को आप पूरा करते हैं सर जी। तो
1: जी
0: बस
1: जी
0: यही
1: जी
0: यादें हैं सर जी हमारी रेडियो से, और मेरे
1: जी
0: पिताजी का जो रेडियो की दुनिया से मतलब मेरा शौक लगा है, बस मैं रेडियो के सहारा ही मेरे पिताजी को याद करता हूँ। मेरे पिताजी तो नहीं है,
1: जी जी जी ओके
0: पर रेडियो के माध्यम से उनकी यादों को अपने दिल में सजाए हुए रखता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जी। तो
0: जी
1: लोकेंद्र जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने रेडियो के बारे में, और आपके इस तरह से रेडियो से जुड़ा तो बहुत ही अच्छा लगा, और आगे भी इस तरह से बातें करते रहेंगे। तो
0: बिल्कुल सर
1: अब
0: जी, बहुत
1: जी
0: यादें हैं रेडियो की तो मतलब बचपन से लेके अभी तक की।
1: जी जी जी अगली बार जब कॉल लगेगा तब फिर से बात करेंगे इसके बारे में।
0: जी सर जी,
1: जी जी
0: और गाना मेरा रहेगा संघर्ष फिल्म का, इसमें गाना है तुझे आजकल तुझे चाहती, ये भी टेलीफोन पर फिल्माया गया गाना है सर।
1: ओके जी, तो किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
0: ये शारदा प्रसाद जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं, अर्जुन प्रधान जी हैं, टेक चंद्र अग्रवाल जी हैं, सतीश रघुवंशी हैं, अनुप कुमार भट्टाचार्य जी हैं, बाइकोन मुंडा जी हैं, भगवान सिंह जी हैं, और दिलीप पाहुजा जी हमारे मित्र।
1: तो लोकेंद्र जी कॉल
0: और
1: करने
0: यह
1: के लिए बहुत
0: आकाशवाणी के लिए भी एक गीत रहेगा,
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: तुझे रात दिन तुझे चाहते हैं।
1: जी, चाहते हैं और चाहते रहेंगे। लोकेंद्र जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर।
1: नमस्कार सर, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: मैं अमल बात कर रहा हूँ असम से। थैंक
0: जी। अमल बसुमतारी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: यू सर।
0: जी।
1: हमारे असम में भी कल रात से बारिश हो के अभी थोड़ा मौसम ठंडा है, ज्यादा
0: अच्छा जी।
1: गर्मी नहीं पड़ रहा है।
0: बढ़िया।
1: और मैं ऐसे मौसमों में एक गानों की फरमाइश करना चाहता हूँ।
0: हाँ जी बिल्कुल, कहिए कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे।
1: इंग्लिश बाबू डीसी मैम फिल्म का दीवाना, मैं तेरा दीवाना, ये गाना को सुनना है।
0: जी। और किन लोगों के साथ सुनना
1: और
0: चाहेंगे।
1: खासकर मैं इस गाने को आपको ही डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके, थैंक यू सो
1: और
0: मच।
1: आकाश और एनएसएम की सभी आरजीसी को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। और हमारे दोस्त को डेडिकेट करना चाहूंगा, भाईकोन मंदा,
0: जी
1: और बिमल बसुमतारी, रमेश पात्रो, जोगेंद्र रोंगटी, रुखुबेले मेथा, हितेंद्र दास, देवाशीष हजूरिका, प्रेमजीत चक्रवर्ती, अनुप कुमार भट्टाचार्य जी, सुटापा भाभी, और हमारे आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ त्रिपुरा से, अविनाश तेली, और भगवान सिंह परमार को, रमेश प्रजापति को, राकेश को, शिवा लोहार को, और हमारे असम में मेरी बहन है अंजलि बसुमतारी है, और सभी आकाशवाणी ईटानगर सुनने वाले दोस्त को डेडिकेट करो सर।
0: ओके। तो अमल जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश आदरणीय महोदय, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी हृदय से धन्यवाद। मानवर, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति सिद्धार्था सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर, आप कैसे हैं? मौसम कैसा है? बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है?
0: जी शारदा प्रसाद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और बारिश का आनंद ले रहा हूँ।
1: जी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस वर्षा ऋतु का आनंद लेते रहिए। और आपसे प्रार्थना है
0: हाँ
1: कि थोड़ी सी वर्षा हमारे मथुरा वृंदावन में भेज दीजिए, क्योंकि मथुरा वृंदावन में चमचमाती हुई धूप है, खिली-खिली और मंद मंद गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं, और ऐसे वातावरण में आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी काश ऐसा संभव हो पाता कि आपके वहां मैं कुछ बारिश भेज देता।
1: जी
0: बस यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके वहां फिर से बारिश।
1: भगवान भास्कर अपने प्रचंड किरणों के साथ में उपस्थित रहते हैं।
0: तो धूप से बचे रहिए, रेडियो सुनते रहिए, घर के अंदर बैठ के कूलर और पंखा का इस्तेमाल कीजिए।
1: जी जी बिल्कुल,
0: जी
1: आपकी बातों से सहमत हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर के अंदर रहते हुए गीत संगीत से जुड़ा रहता हूँ और गीत संगीत सुनते हुए मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति गीत संगीत से जुड़ता है और उसमें मग्न रहता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: उसे
0: जी
1: कोई चिंता नहीं होती, कोई अवसाद नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता है। इन सब चीजों से मुक्त होने से आदमी हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न चित रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज से ये पता चल रहा है हमें कि आप बहुत ही खुश हैं घर के अंदर
1: जी जी
0: बैठे हुए।
1: बिल्कुल।
0: तो शारदा प्रसाद जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: बस ईटानगर में बारिश हो रही है
0: जी
1: और तो यही उम्मीद करता हूँ कि एक वर्षा ऋतु का गीत सुन लिया जाए आकाशवाणी ईटानगर से। फिल्म
0: जी बिल्कुल।
1: का नाम है 1942 अ लव स्टोरी। रिम झिम रिम झिम रुम झुम झिझि झिझि रुत में हम तुम हम। ये श्रीला प्यारा गीत है कुमार सानू साहब की आवाज में, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी ईटानगर प्रसारण हेतु।
0: जी जरूर सुनाएंगे और यही आशा करते हैं कि इस गीत के साथ साथ आपके वहाँ पे रिमझिम रिमझिम बारिश हो जाए।
1: जी, धन्यवाद,
0: जी
1: स्वागत है, अभिनंदन है वर्षा ऋतु का,
0: जी
1: और वर्षा रानी जो है हमारे ऊपर में मेहरबान हो जाए
0: जी
1: इसी उम्मीद
0: बिल्कुल
1: के साथ में।
0: जी
1: ये प्यारा सा खूबसूरत गीत सादर समर्पित करता हूँ हमारे मित्र योगी वाड्रा साहब को,
0: थैंक यू।
1: और वाड्रा साहब के साथ साथ में याद करना चाहता हूँ ब्रज रेडियो श्रोता मित्र सर श्री लोकेन्द्र वर्मा जी, अविनाश जी, आशुतोष जी, राजू यादव और तेग चंद्र अग्रवाल, सतीश रघुवंशी जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, पुरुषोत्तम जी, पूरम जी, पुष्कर नाथ जी और इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए शारदा प्रसाद जी। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी हृदय धन्यवाद, आभार, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्ते। जी
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर, थैंक यू।
0: तो
1: बहुत
0: आप?
1: कैसे हो?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? आप अपना नाम भी बता दीजिए।
1: मैं हरदोरा बोल रहा हूँ, विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गोपुर असम से।
0: ओके, हरदोरा कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वहाँ का
1: हाँ हाँ
0: मौसम
1: सर,
0: कैसा है अभी?
1: सर आज तो बारिश नहीं हुआ है, कल तो बहुत जोरदार बारिश हुआ था।
0: अच्छा जी,
1: हाँ, आज बारिश नहीं हुआ तो बहुत ठंडा पड़ रहा है।
0: अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: वहाँ
0: तो
1: का कैसा है? हाँ
0: जी हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है।
1: हाँ
0: यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया है मौसम। जी
1: जी जी
0: अभी
1: जी
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप, घर से या बाहर?
1: सर, मैं घर से ही बोल रहा हूँ।
0: अच्छा घर से बोल रहे हैं ना,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: चलिए कहिए, घर में बैठे बैठे कौन सा फिल्म का गाना आज सुनना चाहेंगे आप?
1: डन नया फिल्म से सोनू निगम और सरहाना सरगम के आवाज़ में बहुत, मुझे गान थोड़ा याद नहीं है।
0: कोई बात नहीं,
1: हाँ, गाना बहुत दूर जाने की दिल चाहता, उस गीत में आवाज दिया था सोनू निगम और सरहाना सरगम ने।
0: अच्छा सोनू निगम और साधना सरगम, और
1: हाँ
0: किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे हरिद्वारा जी?
1: सर, ये गीत, हाँ, पहले तो आपको सुनाऊंगी ये मैं गीत।
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: और निलोत्पल दोहरा, दिनेश शर्मा, देवदत्त, सुम्बी दत्त, भाईकॉन मुंडा, रमेश पत्र और हेलो फरमाइश से जुड़े रहे सभी श्रोता के लिए।
0: ओके, तो हरिद्वारा जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: जी जी सर।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप, सुनाइए।
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, आपसे बात करके हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: बताऊँ आपको, सोयाबीन की फसल लगाई हमने।
0: जी
1: जी, तो अभी खरपतवार निकालने का काम चल रहा है यहाँ पर। हाँ जी, और साथ में भी हम कार्यक्रम सुनते हैं। तो मौसम थोड़ा अच्छा नहीं है क्योंकि बरसात कम हो रही है।

0: ओके
1: अभी 8 दिन से बरसात नहीं हुई है तो थोड़ी जरूरत पड़ रही है सोयाबीन की फसल के लिए जी।
0: अच्छा, तो इन
1: और
0: सभी,
1: बताऊँ आपको, कुछ लोगों ने ऑरेंज के बगीचे भी लगा रखे हैं यहाँ पर। हाँ
0: अच्छा ऑरेंज होता है वहाँ
1: जी
0: पे?
1: जी हाँ
0: ओके वाह वाह क्या बात है। तो प्रेम सिंह जी, आज कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं?
1: हाँ बरसात बहुत कम हो रही है तो हम बरसात के लिए ही गाना सुनेंगे। फिल्म
0: जी जरूर।
1: का नाम है प्यासा सावन और गाने के बोल है, और हम तो यही कहेंगे मेघा से परदेश न जाए, पूरे भारत वर्ष में जोरदार बारिश करे ताकि सभी फसलों को अच्छा पानी मिले, सिंचाई का साधन भरपूर रूप से सभी के लिए हो
0: जी जी
1: और पूरे भारत देश में खुशहाली छाए।
0: जी बिल्कुल। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी साथी तो हमारे बहुत सारे लोकेन वर्मा, भगवान सिंह परमार, आशुतोष अग्निनाथ, संगीता जी, सुनील जय भोपाल से, रमेश टेलर है, भगवान सिंह परमार है, और आपके साथ भी सुनना चाहेंगे।
0: ओके, तो जरूर सुनाएंगे आपका पसंद का गाना। प्रेम सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, उसके तुरंत बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और आप सुन पाएंगे मिड न्यूज एवं दोपहर समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877।

0: 1216 पर।
1: झाड़ू घुमाओ वार्ड चमकाओ आईएमसी क्लीनलीनेस लीग 2026 स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
0: अटेंशन, पारी हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes.
3: दोस्तों, हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त दोपहर के ठीक 2 बजने वाले हैं। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड न्यूज एवं दोपहर समाचार। हम लौटेंगे 2:30 पर कार्यक्रम हिट ऑफ 90s के साथ। आप सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।
4: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Monsoon session of Parliament begins today. Both houses witness multiple adjournments amid opposition uproar. Prime Minister Narendra Modi calls for productive monsoon session of Parliament, says it will lead to welfare of the nation. Supreme Court to hear pleas seeking probe into Ram Temple donations theft case today. President Draupadi Murmu holds delegation level talks with her Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau. And IMD issues red alert warning for heavy to very heavy rainfall over parts of Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. The monsoon session of Parliament began today. The Lok Sabha and the Rajya Sabha have been adjourned till 2 p.m. amid opposition protest over the NET paper leak issue. When the House met after the third adjournment at 1 p.m, the opposition members continued with their protest over the NET issue. Presiding Officer Dilip Saikia tried to take up the scheduled business, but the opposition members did not pay heed to the Chair's advice and continued with their protest. Amid the uproar, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. Earlier, when the Lok Sabha met at 11 a.m, the House paid tributes to 6 of its former members who passed away recently. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members, including from the Congress and the Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon.
5: ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपराओं और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है।
4: The Rajya Sabha was also adjourned till 2 p.m. following the opposition protest over the NET issue. When the upper house met after the third adjournment at 12:50 p.m., the opposition MPs again raised slogans over the NET paper leak issue. The chairman, C.P. Radhakrishnan, urged the members to maintain decorum and allow the house to function. Amid the ruckus, the upper house was adjourned till 2 p.m. Earlier, the house was adjourned thrice over the issue.
6: This session has an important legislative and deliberative agenda. I urge members to remain focused on the business, as every disruption delays discussion on matters affecting the nation and the people we represent. I appeal to members across all

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माई व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से

0: इस सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
1: आई अपील टू मेंबर्स अक्रॉस ऑल साइड्स ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन व्हाइल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर इंटीग्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस।
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग

0: धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई तीन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित बारी बारी से मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, सभा के इस भाग में प्रस्तुत है कार्यक्रम हिट ऑफ 90s, जहां हम आपको सुनवाते हैं 90s के कुछ सुपरहिट और एवरग्रीन सॉन्ग्स को। तो चलिए 90s के सबसे पहला गीत सुनते हैं, शोला और शबनम फिल्म से तू पागल प्रेमी आवारा, अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में।

0: जोहान्सबर्ग एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट ऑफ 90s। दोस्तों 90s की शुरुआत ही हुई थी जब बॉलीवुड में शाहरुख खान की एंट्री हुई थी और इंडस्ट्री में वो आते ही चाह से गए। जब उन्हें दर फिल्म का ऑफर हुई थी वो दुविधा में थे कि एक ऐसा रोल करना चाहिए या नहीं जहां उन्हें नेगेटिव रोल में दिखाया जाएगा। वो डरे हुए थे कि ऑब्सेसिव लवर का रोल दर फिल्म में उन्हें लेना चाहिए या नहीं। और उस वक्त सनी देओल स्टार थे, सुपरस्टार थे, बहुत पॉपुलर थे। उन्हें तो यश चोपड़ा जी ने चॉइस दी थी कि उन्हें सुनील मल्होत्रा का रोल करना है या राहुल मेहरा का। तो सनी पाजी ने सोचा कि भाई मैं तो हीरो हूँ, विलेन का रोल कैसे कर सकता हूँ, लोगों को मैं पसंद आना बंद हो जाऊंगा। तो उन्होंने हीरो का यानी सुनील मल्होत्रा का रोल चूज किया और शाहरुख खान को मिला राहुल मेहरा का नेगेटिव रोल में। और हम सब जानते हैं कि ये रोल कितना बड़ा हिट हुआ। ऑडियंस ने विलेन राहुल मेहरा के साथ सिंपथाइज किया और रातों रात शाहरुख खान सुपर डुपर स्टार बन गए। दोस्तों बात हो रही है दर फिल्म की, तो सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना, तू मेरे सामने तुझे देखूं के प्यार करूं, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में।
1: तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं,

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हिट ऑफ 90s कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। और दोस्तों, 90s का दौर बॉलीवुड का एक ऐसा दौर था जहां हर हीरो की एक अपनी अलग पहचान थी। कोई रोमांस का बादशाह था, कोई एक्शन का किंग, तो कोई अपने इंटेंस एक्टिंग के लिए जाना जाता था। लेकिन एक एक्टर ऐसा भी था जो जब स्क्रीन पर आता था तो एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट होता था। जी हाँ, वो थे गोविंदा। आज जब हम 90s के सुपरस्टार्स का जिक्र करते हैं तो अक्सर हम शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सनी देओल और अजय देवगन के नाम सबसे पहले याद करते हैं। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स और ऑडियंस के प्यार की बात की जाए तो गोविंदा की सफलता किसी से कम नहीं थी। कई मायनों में उनके हिट रेशियो अपने दौर के कई बड़े सितारों से भी बेहतर थी। लेकिन गोविंदा का सफर किसी ओवरनाइट सक्सेस की कहानी नहीं थी। करियर के शुरुआती दिनों में लोग उन्हें एक डांसिंग स्टार के रूप में देखा करते थे। कुछ तो उन्हें गरीबों का मिथुन चक्रवर्ती तक कह देते थे। गोविंदा ने हत्या जैसी फिल्म में अपनी इमोशनल एक्टिंग भी दिखाई, लेकिन फिर भी उन्हें वो सुपरस्टार वाला दर्जा नहीं मिल रहा था। लेकिन हर सुपरस्टार की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। गोविंदा के लिए वो टर्निंग पॉइंट था देवी धवन। शोले और शबनम से शुरू हुई ये जोड़ी धीरे धीरे बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल पार्टनरशिप्स में से एक बन गई। और फिर आई आंखें फिल्म। दोस्तों, आंखें फिल्म सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, इन 90s की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक थी। इस फिल्म ने गोविंदा के स्टारडम पर लगे सारे सवालों को खत्म कर दिया। इसके बाद तो जैसे हिट फिल्मों की बारिश शुरू हो गई। राजा बाबू, कुली नंबर वन, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर वन, दीवाने, दीवाना मस्ताना, बड़ी मियाँ छोटे मियाँ और दूल्हे राजा। आज भी इन फिल्मों के नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गोविंदा और देवी धवन की जोड़ी ने कॉमेडी को एक नई रंग दिया। उनकी फिल्म्स लॉजिक से नहीं, एंटरटेनमेंट से चलती थी और ऑडियंस को वही पसंद आती थी। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं, गोविंदा और नीलम पर फिल्माई गई ये आइकॉनिक गाना आपके आ जाने से, मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज के ये 90s का सुरीला सफर यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस। उसके तुरंत बाद 3 आप सुन पाएंगे मिशमी का मंच श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। हम लौटेंगे 3:30 पर कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। आप कहीं नहीं जाइएगा और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, दिल से दिल की बात।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप बने हुए मेरे साथ यानी आपकी रेडियो साथी RJ दुनिया के साथ। और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का।

दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं बॉलीवुड अपडेट के साथ, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की सबसे ताजा और सबसे चटपटी खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज के ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। और सबसे पहले खबर सलमान खान से जुड़ी है। पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर सलमान खान की हेल्थ को लेकर काफी चर्चा हो रही है। मुंबई के एक इवेंट में उनके अपीयरेंस का वीडियो वायरल होने के बाद कई फैंस ने उनकी तबीयत को लेकर चिंता जताई। इसके बाद सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, आप लोगों की तबीयत कैसी है, बस फिर क्या था। फैंस ने कमेंट्स में उनके लिए दुआएं और गुड विशेस की बारिश कर दी। इस इवेंट के दौरान जब मीडिया ने उनसे उनकी अपकमिंग फिल्म मातृभूमि के बारे में सवाल पूछा, तो सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, आस्क मी एनीथिंग नॉट दैट वन क्वेश्चन। उनका ये अंदाज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और अब बात करते हैं इस वक्त बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोजेक्ट रामायण के। फिल्म का बज हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में हुए ग्रैंड इवेंट में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और सनी देओल ने हिस्सा लिया। इवेंट का सबसे इमोशनल पल तब देखने को मिला जब रणबीर कपूर ने स्टेज पर सनी देओल और कवि कुमार विश्वास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फैंस ने रणबीर के इस विनम्र अंदाज की जमकर तारीफ की और इस वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है। और इस इवेंट में सनी देओल ने भी अपने हनुमान के किरदार को लेकर दिल की बात कही। उन्होंने कहा कि हनुमान का रोल निभाना आसान नहीं था और वो अभी भी इस सफर की शुरुआत में है। सनी देओल ने भरोसा जताया कि रामायण एक ऐसी फिल्म होगी जिसे हर भारतीय जरूर देखना चाहेगी। उनकी ये बात फैंस को और एक्साइट कर दिया है।

0: और एक बड़ी खबर आ रही है डायरेक्टर कुणाल खोली से जुड़ी है। हम तुम और फना जैसे यादगार फिल्में देने वाले कुणाल खोली अब अपनी पहली इंटरनेशनल इंग्लिश फिल्म ऑल अबाउट हर लेकर आ रही है। इस अनाउंसमेंट के बाद बॉलीवुड में उनके नए सिनेमैटिक सफर को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रही है। फैंस भी देखना चाहते हैं कि कुणाल खोली ग्लोबल ऑडियंस के लिए क्या नया लेकर आने वाली है। और आखिर में एक इंटरेस्टिंग बॉक्स ऑफिस अपडेट, क्रिस्टोफर नोलान की हॉलीवुड फिल्म दाउदी से को लेकर दुनिया भर में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स अपने फिल्मों की रिलीज डेट प्लान कर रहे हैं कि नोलान की फिल्म से सीधा क्रेश ना हो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म का कितना बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बॉलीवुड की सबसे बड़ी और ट्रेंडिंग खबरें। ऐसे ही फिल्मी अपडेट्स के लिए आप सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत, गदर टू फिल्म से अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाजों में दिल झूम।
1: निया, ये कामयाब होटल है, यहाँ नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। तुम आते जाओ, हम सोचते जाएंगे।

दोस्तों इसी के साथ ही बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे वांछित श्रोताओं का समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस
1: ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, अब वक्त है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। तो आइए कार्यक्रम का सबसे पहला गीत सुनते हैं हाईवे फिल्म से माही वे, जिसे गाया है ए आर रहमान ने।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम का ये सुरीला सफर यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी ठीक 4 बजे आप सुन पाएंगे ईद मिश्री श्रोताओं का समाचार।

0: वंच श्रोताओं का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है ईद उमिस में कार्यक्रम।
1: एचा आकाशवाणी ईटानगर आचला पुची जैन आसोली एतानीची ईद उमिस में आहोला कीजिए दरगालंबो आयुदी पार्लियामेंट सेशन है एता इन अब पुला पुची जो हलो समाच निलीबा जी त्योचा ओना होलो के बाजी मने जी पगाम भमाहो नादेन्द्रा भास्कर राव ओमवती देवी सुधांशु सील मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद्र खांडोरी के पी दाना पलंदो ने प्यारे लाल सांखर लापागे बहा एम पी जोगाऊ बने शिगा बा वाला एदोने कतार माची शिबा आमिर शेख हमद बिन अल थानी वालामा बी देगा ला होगा कतार हाथी एहोबा रोने तयगा आमिर है इमु प्रागचिदा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला में लगाचिदा आहोगा आओ योता इंडिया टिकाची आयु ओ अनुम में बहाने इनका जा आतोचे तो जो आमा जो दो ने युकिशा आचु प्रांतो निजिगामी बुजिना ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पारनाइक में बुनी आसाम गुवाहाटी में ने इंडिया माची बहाची ये चुदो ने भुंतालीची जोने वाय आचु थोपुची पोआ सेमिनार आखगा माची चाहबा महो लगभदा आहोगा आसाम माची भारतीय इतिहास संकलन समिति दो ने मई दिल्ली माचे भारतीय इतिहास संकलन योजना में अहा एचला पुची जिहू माची ने अखापगम्बा सेमिनार मा चिचैबा गवर्नर में महा तकसिला धोने नालंदा माचे आहितमुमा ने एचाहोचे आहितमुमा लिबा इंडिया ची जू ना आचो है तांदो प्रणतागा जोगाजिता लाइबादा आहोगा गवर्नर में आ प्रोग्राम माने महा अतिका गेबाने लुतोगे जोगाऊबा महात्मा गांधी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वामी विवेकानंद गुरु नानक आर्यभट्ट दोने किसा आहोगा एमु उखोचि अमु लापेगाचिदा आहोगा स्पोर्ट्स स्टार माने मेडल चाची गुमी जो तांगो इवे दोने अरुणा तुसंगा इवे गबाने बे स्पोर्ट्स स्टार अरुणा पुगादा ने अरुणाचल प्रदेश रूरल डेवलपमेंट दोने पंचायती राज मिनिस्टर ओजिंग तासिंग में बुनी लेखिया तिगोचि खिनिया स्पोर्ट्स एरिना माने एतानुगे बुहुलना बा स्टेट लेवल इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट अखापगाम बाहो लगाने आ एमगा मने कैबाने खोदा प्राने बास्केटबॉल टूर्नामेंट मा एम बेजे ना लाइबादा आओगा होलोमानु दोने हुलुखिन आंदोगचे कपरु यु टीम माचे मा तारहनु मेआनु ब्रमे आ एमगा मा इमेगा मुदा लाहोगा दिवंग वेले दिशी बेकी न्योराक में बुनी ने बुनी निगा आरुजु मिपी दो ने अनिनी सर्कल माचे प्रोजेक्ट जोगा मामा आगुतेगे ने अथोगे बदा आहोगा दिशी में एस ए आर डी को कोचे रोयंग होली आयचे आजिगा मा अथोगे बने तान दो वे बा एगा एन एच आई डी सी एल दो ने कॉन्ट्रेक्टर में आ आयचे शो दो एजी ना लाए बदा आहोगा दिशी में आरुजु एस डी ओ ऑफिस आजिगा मा अतुए बने आ ऑफिस ओ गबाने अतिकाचि इमु में लिखे लाहे गबाने तांदो प्रोगा जिदा लाहे बदा आओगा दिसी में वाइब्रेंट ब्लेस प्रोग्राम बीबीपी को कोमाने गे पुली इमुली दोने निपियातिको कारुची तिमु रिजोर्ट आजिगा प्रोजेक्ट जचामा मा अतु ओ गबदा आओगा आ प्रोजेक्ट दो इगावे पुला पुली बा अजय तेंदुगावदा ने दिशी लाख गाची महो दिशी में निपिया तिकोचे हेल्थ वेलनेस सेंटर माचे देहा प्रणावे दोने आपे वाल लाप्रगे आ सेंटर माचे रूम में तो चिपुआ अरुंधा डिपार्टमेंट में शो अतु तेजी ना लाओ बदा आहोगा इंडियन आर्मी माचे गजास कोर्स में बुनी तवांग डिस्ट्रिक्ट माचे एजेंट ब्राहो माफिट यू तक्सेंग गोम्पा आनंदो रोलेटें आतिकोने याक मेला अखगा मने जोशा जाहेता में ब्रोकपा एवं माचे इमो नंबर इतुबु आपी आई तो ने प्राण ने जो ना आहितया मैं नंबर प्राइस आपी वो बड़ा होगा पपुं परे लापरे आने से परिस माचे डिस्ट्रिक्ट एम प्रेमा अबु नया आयो शादा ने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी माच में ला होगा ने अतिका ब्रायमा अरुणा मैं तो ने अबुली चेंबर नापा आयो शादा ला होगा अरुणाचल प्रदेश माचे किक बॉक्सर सनम चंबा में श्रीलंका माचे कोलंबो अतिपने कर्मा फाइट लीग वर्ल्ड स्ट्रेट वेट चैंपियनशिप अखगा मा एम बेगने टाइटल आने के बचा है प्रांबुदा ने चीफ मिनिस्टर पेमा खंड में नौगादा होगा फीफा वर्ल्ड कप अहोमा एब अमेरिका न्यूयॉर्क माचे न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल मैच अखगा मा स्पेन में अर्जेंटीना है खेगे जीरो गोल मने अनेगने एचबुगे ओ बुनी लिबा फीफा वर्ल्ड कप अनेगम बदा आहोगा मैच दोबु बहाने कोको आहेगा फेरान टोरेस में गोल हा बमहो आ मुहा हो अर्जेंटीना मचे मुगे है सु कार्ड अजपा एकेगने होया आहेगा बने इमुह तेया बहुने अली गोल हंगा बचिदा आहगा मेसी में माओ हलु मेली महवाने गोल मा बुगे अतियाबा ला बुगे अर्जेंटीना में वर्ल्ड कप ताजुमा एचा होलीबा किन्हो मेली मा बुगे बे गोल मा अति मितिम सागम बाय दोने जर्मनी वजिगा फाइनल मा बुपीलीबा आयोगा टीम सागा बदा आहगा हूँ गोल हैगा फ्रांस माचे एम्बापे में गोल्डन बॉल अवार्ड ग्राम बमाहो स्पेन माचे रोड्री में गोल्डन बॉल अवार्ड स्पेन माचे गोलकीपर उनाई साइमन में गोल्डन ग्लोब अवार्ड ऐदो ने स्पेन माचे पान कुबार्सी में फीफा बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड गागाम बदा आहोगा इंग्लैंड माचे लंदन लॉर्ड्स माने इंडिया ने इंग्लैंड एबगाचे इम्तान होगे बा मेन्स ओडीआई क्रिकेट मैच अखगा मा रोहित शर्मा में माउ असु यो रन होते बाके दोने इंग्लैंड में इंडिया है अन्यो यो रन मने आनेगने सीरीज पे कानी खेगे मने आनेगा बदा होगा इंग्लैंड में ऐह होगा ने माउ ओवर मा माउ कसो ने यो यो रन होतेगा बमा इंडिया में जिगा ने माउ ओवर मा यो विकेट एबो बायगने माउ कसो ने तारो रन हुतेगा बच महो आ मैच मने शुभमन गिल में यू यू आई दो ने विराट कोहली में यू का पिरान हुते होगा बचता ला होगा इंग्लैंड के बने है बेन डुकेट में पहन दो माओ का पिहु का निरान आई दो ने जेकोब बेथेल में खिंहु खेरान हुतेगा बचता ला होगा ऐतनिसी इतुमिस्मी आहो अलिमाओ दबाए ऐचा आकाशवाणी ईटानगर दिब्रुगढ़ नाले ईद मिसमी प्रोग्राम मा एचमता आशे अनोसो खियामा हो एतनि हेंदो रेफ्यूजी मिहुने ईला मिहुमे आशे बगाची आंजी

0: दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और इससे पहले आप सुन रहे थे ईद मिश्मी श्रोताओं का समाचार। दोस्तों हिंदी फिल्मी गानों का सिलसिला यूं ही हम जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
2: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
2: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
2: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए।

दोस्तों गीत के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज की दूसरी प्रसारित सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचाने में आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा अचपीते में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक तीतांग जंग तथा तकनीकी अभियंता टीम। साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा रात्रि के 9:30 तक। और तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपकी अपनी RJ मंजू। तो दोस्तों, अब मुझे यानी आपके रेडियो साथी RJ दुनिया को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़
2: इरो आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मचौसा दुबासाई सोम जुलाई जिलिंग रंगखू तारीख अरा उरंगजा बलई बाजी खू मिनिट थोड़ा मसो तंगसा प्रोग्राम तफंगाई रुंगलांग रुक कुहांग वासिम केंगलांग रो पार्लियामेंट नंग मॉनसून सेशन पर मचौसा मसो तफंग तो प्रयोजु मचौरांग नापसरा सीबाजी नंग लोकसभा नंग सेशन तफंग तो नंग अनेक रेल तो करोक अफंगबंग मेंबर म हाउस रो ट्रिब्यूट कुतो अरो पर करोक रेल तो मेंबर पर बसकरा राव ओमवती देवी सुडांशु सिल मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद्र खंडूरी केपी

धनपलन पूर्व प्यारेलाल सकवार पूर्व हाउस र कतरवंग फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ममन ट्रिब्यूट कुतंगो रोग परजु लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मसो फानतनांग इंडिया ने कतर रिलेशन रोहोम तहुम शेख हमीद बिन खलीफा अल थानी रोल पर अरेंजांग तो फानत और पार्लियामेंट नंग मॉनसून सेशन पर अगस्त जेलिंग रंगसा रोम तारीख तक तक यांगसी परजु शरद कौ सीटिंग यांगसी मो रोग गुवाहाटी नंग फ्रॉम ट्रेडिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन कमुंग नंग नेशनल सेमिनार तक तनांग मनई अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पटनायक तोंथोक तंगो रुक्त परजु अपीर मसौ फान तनांग वेद व्यास वाल्मीकि चाणक्य आर्यभट्ट सत्श्रुता पतंजलि अशोका आदि शंकराचार्य गुरु नानक देव जी स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी सरदार पटेल नई डॉक्टर अम्बेडकर परसो वमंगरोक ग्रेट थिंकर नई नेशन बिल्डरवन विस्टम जम थरतांजम सेमिनार लामलु कुरंगो फांद और उपन्द्र गवर्नेंस साइंस हेल्थ केयर स्पिरिचुअलिटी नई नेशन बिल्डिंग म करुमत पर सोसाइटी पर रायमायदारो फांद भारतीय इतिहास संकलन समिति असम नई अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना न्यू दिल्ली र सारोम पर सेमिनार पर तग्यांग रंगो रोक्त लेखीवंग खेनिया स्पोर्ट्स एरेना नंग लकरोक स्टेट लेवल इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट तग्यांग र अफंग सेरेमोनी पर मनई अरुणाचल प्रदेश वंग रूरल डेवलपमेंट नई पंचायती राज मिनिस्टर ओजिंग तासिंग र तफांग तंगो रोक्त परजु मिनिस्टर वार मसौ फानतनांग स्पोर्ट्स पर मेडल चेर संगनांगमन अचेन तायर स्पोर्ट्स र डिसिप्लिन रिसाइलन टीम वर्क नई करेक्टर पर तहुरंगो फानत और मचुपांग पर टूर्नामेंट तगयांग रनांग बलयोंग रकरोक टीम तोंथोकत परजु अरुणाचल प्रदेश स्टेट ऑफ पम्बांग रेचकरोक चेन टैलेंटेड यों जिचेक थला एथलेट सेंग पर अंडर 15 नई अंडर 19 कैटेगरी नंग खिली करंगो रुक्त दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट वांग डीसी बेकिर न्योराग्र मनई गेपोलिन इमोली नई मिपी हा वांग वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम अंडर वांग इको टूरिज्म रिसोर्ट प्रोजेक्ट ताम पर राय कतंगो रुक्त अरो अहु क्वालिटी जांगरांग परम होमोइनंग तचई मरुक रो पर प्रोजेक्ट बॉर्डर केंग ताम नंग टूरिज्म काउप अमाइ तक यांगी लोकल एम्प्लॉयमेंट तखोंगी अरो इकोनॉमी पर सहेंग छिंग रो दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट वांग डीसी र फांद परम डीसी र मिपी हा वांग हेल्थ नई वेलनेस सेंटर मन राय कतंगो रुक्त परजु सेंटर नंग बाउंड्री वाल मानम अरो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमाइ तक यांग कमुंग नंग डीसी र कॉन्सर्न डिपार्टमेंट मरुक्त इंडियन आर्मी वंग गजराज कॉर्प्स ताक्संग गोम्पा को वंग हजासर बंगा फिट चोक वंग ग्रोलेटिंग हा नंग मनई ग्रांड याक मेला तगयांग तंगो रुक्त और ऊपर प्रोग्राम माम इंडियन आर्मी वंग जीओसी र ब्रोकपा कम्युनिटी मेंबर हेंग म ब्लैंकेट खाटसाम कुत आरो पार्टिसिपेंट्स हेंग लिगवन नई लोकल अचीवर सेंग म याक मेला नंग फेलिसिटेट कुतंगो रुक्त श्रीलंका नंग कोलंबो नंग इवेंट चेक तहई मनई अरुणाचल प्रदेश वंग किक बॉक्सर सनम जम्बार कर्मा फाइट लीग केएफएल वर्ल्ड स्ट्रोवेट चैंपियनशिप चेतंगो रुक्त और ऊपर केएफएल चेत मोरव चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू नई डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौना मेन्द्र सोनम जम्बा म कॉन्ग्रेचुलेट कुतंगो रुक्त पांग जनई रखा क्रोक पांग फिफा वर्ल्ड कप स्पेन र चेत मनई रंगपु न्यूयॉर्क नंग न्यू जर्सी स्टेडियम नंग स्पेन नई अर्जेंटीना तुंग फाइनल मैच तो नंग स्पेन र अर्जेंटीना पर असी गोल मचई रौ प
빵 하지 내라 크록크록 빵 FIFA 월드컵 챔피언 그냥 더 아로 인디아 메토로지컬 디파트먼트 IMD 더 베라 룽랑 구드낭 파품파레 디스트릭 낭모 Arunachal Pradesh wang Seratakau district tam mo yellow alert kudo Paro district tam wang akhau jaga nang rang mo fekshi jam mo apang rang jin jangchi mana jang mo ru to rung rang ita nang thumro

नमस्कार दोस्तों, तांगसा डायलेक्ट न्यूज के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अरुण एफएम प्रसारण सभा में। और हाँ, थैंक यू सो मच पूरा तुनिया जी आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए, और उम्मीद करती हूं कि आपका ये शाम बहुत ही खूबसूरत बीते। वेल दोस्तों, स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 4:27 हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू होती है हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की तीसरी प्रसारण सभा। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी आरजे मंजू पामो। ये भी बता दूं आपको कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद है प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम।

दोस्तों, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती ही है। ऐसा कोई इंसान नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं जहां दुख तकलीफ नहीं आया हो। लेकिन हाँ, कामयाब और आगे वही बढ़ पाता है जो इन सभी दुख तकलीफों को झेल कर हिम्मत कर कर आगे बढ़ते हैं मुस्कुराते हुए। तो हमेशा अपने तकलीफ के समय कभी दुख आता है तो भी उस दुख को झेलने की हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, परिणाम आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, मनोरंजन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण FM 103.1 MHz पर, जिसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का।

हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ साथ दोस्तों बातें भी करेंगे, कुछ अच्छी कुछ जरूरी। नींद पूरी हो तो हर सुबह मुस्कुराती है। जी हाँ दोस्तों, नींद पूरी हो तो हर सुबह मुस्कुराती है। थकी हुई जिंदगी फिर भी गुनगुनाती है। सेहत की सबसे सस्ती और अनमोल दवा है अच्छी नींद, जो हर दिन नई ऊर्जा दे जाती है। जी हाँ दोस्तों, शरीर को पूरी नींद की बहुत जरूरत है। अगर आप अच्छी तरह से नींद लेते हैं तो सुबह आप एनर्जी से भरपूर रहते हैं। लेकिन हाल ही में देखा गया है दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप के कारण नींद की कमी हो गई है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करें, कैसे अपने आप को अगले दिन के लिए चुस्त और दुरुस्त रखें। हालांकि फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में ये आदत रह गई है कि अभी रात को जागना है और उस समय ठीक नींद नहीं आती है। तो ऐसे में हम क्या करें दोस्तों? और बात यह है कि हमारे शरीर को अच्छी नींद की बहुत जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं आज इसी नींद पर। नींद हमारे शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है जितना भोजन, पानी और शुद्ध हवा। ये हम सभी जानते हैं। जब हम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं तो शरीर और हमारा मस्तिष्क खुद को ठीक करते हैं। दिमाग तरोताजा हो जाता है और याददाश्त और कंसंट्रेशन बढ़ती है। हृदय स्वस्थ रहता है और रक्तचाप नियंत्रित रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी मजबूत होती है। शरीर की कोशिकाओं और मांसपेशियों की मरम्मत होती है। तनाव कम होता है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। और तो और वजन नियंत्रित रखने में भी नींद के कारण मदद मिलती है। डायबिटीज हो, मोटापा हो या फिर हार्ट डिजीजेस जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप के चलते हम जो इन कुछ दिनों में हमने जो अपनी नींद गंवाई है, इसके लिए अभी हमें अपने शरीर को तैयार करना है कि किस तरह से हम कम बैक करें और अपने नॉर्मल रूटीन पर आ जाए। इसी पर बात करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, यानी कि कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के दौरान। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का।

अच्छा, तो मेरे प्यारे दोस्तों, बता दूं आपको कि आप आनंद ले रहे थे इस गीत का मेरी जंग फिल्म से, और बता दूं एक बार फिर से आपको कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। दोस्तों, ये फीफा वर्ल्ड कप के वजह से दोस्तों, जो रात देर रात जागने की आदत जो बन गई है, इसे कैसे ठीक किया जाए। रात को जागने की आदत भी एक तरह की शरीर की बॉडी क्लॉक बदल देती है। इसे ठीक करने के लिए आपको कुछ तरीके बताती हूँ। हर दिन 15 से 20 मिनट पहले सोना शुरू करें। अगर आप 2 बजे सो रहे थे या 2 बजे तक जाग रहे थे, तो पहले 1:45 को सोने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर 1:30 को, मीन्स एक एक दिन के बाद, और फिर धीरे धीरे अपने पुराने समय तक वापस आ जाएं। और सुबह एक ही समय पर उठने की आदत डालें। चाहे रात को आप देर से ही क्यों ना सो, लेकिन सुबह उसी समय पर उठने की आदत डालें। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर को जल्दी से नई दिनचर्या की हमारे शरीर आदत बना लेती है। सुबह की धूप ले और हल्की सैर करें। धूप शरीर को संकेत देती है कि अब दिन की शुरुआत हो गई है। रात में मोबाइल, टीवी और मैचों की हाइलाइट्स देखने की आदत प्लीज कम कर दें। अभी सोने से कम एक घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। और फिर रात में दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि रात में चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक लेने से बचे, क्योंकि ये देर तक जगाए रखती है हमें। सोने से पहले शांत गतिविधियां करें, जैसे कि किताब पढ़ने की आदत डालें, हल्का धीमी आवाज में संगीत सुने, गहरी सांस लें, दिन में लंबी नींद बिल्कुल भी ना लें, नींद में लंबे समय तक बिल्कुल भी ना सोए, क्योंकि इससे रात की नींद पर असर पड़ती है। अगर आप दिन में बहुत ज्यादा सो जाते हैं तो रात को आपको नींद कम आएगी। इस तरह से दोस्तों, अगर आप अपने दिनचर्या को बदलने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने पुराने शेड्यूल में जरूर वापस आ जाएंगे।

श्रोता राहत फतेह अली खान के गाए हुए इसी गीत के साथ ही बता दूं आपको कि कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार बातों और गीतों के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिन्दी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे नोक्ते डायलेक्ट न्यूज और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक नोक्ते डायलेक्ट न्यूज के बाद।

नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने गुवाहाटी में आयोजित फ्रॉम ट्रेडिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटिंग भारतीय इतिहास एंड भारतीय ज्ञान परंपरा इन मॉडर्न गवर्नेंस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा ऐतिह्य अन्वेषण 5.28 में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पासांग दोर्जी सोना ने आज सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग तथा अमर चित्रकथा के

0: अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसका उद्देश्य राज्य के गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथाओं का संरक्षण और उन्हें भावी पीढ़ी तक पहुंचाना है। अरुणाचल प्रदेश के किक बॉक्सर सोनम जोम्बा ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित कर्मा फाइट लीग के FL8 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व स्ट्रोवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम किया। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश बना। और इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा को आज के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को लेकर कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज सदन में नीट मुद्दे पर 6 बार स्थगन हुआ। राज्यसभा में कार्यवाही सुबह 11 बजे नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुई। बाद में सदन ने अपने पूर्व सदस्यों बलबीर के पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगसाय रामकृष्ण और एच हनुमंत थप्पा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका अंतर सत्र के दौरान निधन हो गया था। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफ असनानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उन्होंने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से।
0: केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या भारत में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मानसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा है कि महज एक महीने में देश की अनेक उपलब्धियां हासिल की है जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने गुवाहाटी में आयोजित फ्रॉम ट्रेडिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटिंग भारतीय इतिहास एंड भारतीय ज्ञान परंपरा इन मॉडर्न गवर्नेंस विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा ऐतिहासिक अन्वेषण 5128 में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा है कि यह संगोष्ठी देवव्यास, महर्षि वाल्मीकि, चाणक्य, आर्यभट्ट, सुश्रुत, पतंजलि, सम्राट अशोक आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव जी, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल तथा डॉ. भीमराव

0: अम्बेडकर जैसे महान चिंतकों और राष्ट्र निर्माताओं की ज्ञान परंपरा से पुनः जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि शासन विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा, आध्यात्मिकता और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उनके योगदान आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन भारतीय इतिहास संकलन समिति असम तथा अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली द्वारा किया गया। शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने आज सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग तथा अमर चित्र कथा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथाओं का संरक्षण और उन्हें भावी पीढ़ी तक पहुंचाना था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोना ने लिखा कि बैठक में राज्य के इन गुमनाम नायकों के जीवन पर आधारित आकर्षक कॉमिक पुस्तकों एवं 2D एनिमेटेड शिक्षक सामग्री विकसित करने की संभावना पर चर्चा हुई, ताकि उनकी कहानियों को युवा पाठकों तक अधिक प्रभावी और प्रेरक रूप में पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि इन प्रकाशनों को कक्षा 6 से 10 तक विद्यार्थियों के लिए पूरक अध्ययन सामग्री के रूप में शामिल करने पर भी विचार विमर्श किया गया है। इनका प्रकाशन अंग्रेजी, हिंदी तथा चयनित जनजातीय भाषाओं में किए जाने की योजना है, ताकि इनकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। अरुणाचल प्रदेश की किकबॉक्सर सोनम जोम्बा ने श्रीलंका में कोलंबो में आयोजित कर्मा फाइट लीग के FL8 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व स्ट्रॉवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एवं उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने इस उपलब्धि पर सोनम जोम्बा को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको चिशिनाउ स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू को मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार करना है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों देश के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अब खेल जगत के खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की, तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: अमेरिका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे हैं, जिसके कारण हॉर्मुज जलदमरु मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के हॉर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान को नए हमलों की सूचना दी है। अमेरिका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों में ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: This is Akash Vani, the news read by Priya Badu. The monsoon session of Parliament began today. When the Lok Sabha met at 11 a.m., the House paid tributes to 6 of its former members who passed away recently. They were Nadenla Bhaskar Rao, Omwati Devi, Sudhanshu Seal, Major General Bhuvan Chandra Khanduri retired, K.P. Dhanpalan and Pyarelal Shankar. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Lok Sabha Speaker Om Birla

नमस्कार दोस्तों, नोक्ते डायरेक्ट न्यूज के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो मनोरंजन के सिलसिले को जारी रखते हुए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का।

Attention, Pari Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा। लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

श्रोता बताना चाहेंगे एक बार फिर से आप सभी को कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और दे दे प्यार दे फिल्म के गीत के बाद इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को चांद मेरा दिल फिल्म से सचिन जिगर और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

श्रोता अरिजीत सिंह और नंदिनी श्रीकर के गाए हुए इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आप निराश बिल्कुल भी मत होइए क्योंकि आगे हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम शाम की महफिल।

श्वेता जर्सी फिल्म के गीत के बाद ही आपको बताना चाहूंगी कि कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन मनोरंजन का सिलसिला रुकने वाला तो है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों का।

मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो, बोलो ना।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

इसी के साथ ही श्रोता बताना चाहेंगे आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से अरुण एफएम प्रसारण सभा में। आई श्रोता, मनोरंजन के इस सिलसिले को जारी रखते हुए आगे आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार की ओर।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC applies.

स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ साथ दोस्तों आज हम ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप सभी बहुत पसंद करते हैं।

करते हैं जिन्हें जिनका हाथ 2.5 किलो का है। जी हाँ दोस्तों, आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि किन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल के बारे में। 19 अक्टूबर 1956 को जन्मे सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है। घर में उन्हें सनी कहकर बुलाया जाता था और फिल्मों में उन्होंने इसी नाम से आने की ठानी। धर्मेंद्र के सबसे बड़े बेटे सनी का एक भाई बॉबी देओल और दो बहनें विजेता और अजीता हैं। दोनों बहनें अमेरिका में रहती हैं। सनी की दो हाफ सिस्टर्स ईशा और आहाना देओल हैं। 80 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में कई सितारों ने अपनी संतानों को बॉलीवुड में लॉन्च किया। धर्मेंद्र ने भी अपने बड़े बेटे को फिल्म बेताब, जो कि रिलीज हुई 1983 के जरिए, अभिनय की दुनिया में प्रवेश दिलाया। फिल्म सुपरहिट रही और सनी के कदम बॉलीवुड में मजबूती से जम गए। फिल्मों में लॉन्च करने से पहले धर्मेंद्र ने सनी को बर्मिंघम में अभिनय सीखने के लिए भेजा था। पढ़ाई के दौरान सनी अपने पिता धर्मेंद्र की जीन्स पहनकर जाते थे और दोस्तों पर रौब जमाते थे कि यह जीन्स तो मेरे पापा ने शोले में पहनी थी। सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को बेहद चाहते हैं। धर्मेंद्र का वो इतना सम्मान करते हैं कि पिता के सामने वो कुछ बोल भी नहीं पाते थे। धर्मेंद्र को सनी अपने प्रिय अभिनेता मानते हैं। धर्मेंद्र की फिल्म वेलकम ब्लैकमेल का गाना पल पल, जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र की फिल्म ब्लैकमेल का गाना पल पल दिल के पास उनका सबसे पसंदीदा गीत है। अभिनेत्रियों में कहा जाए तो सनी को तनुजा बहुत पसंद है। धर्मेंद्र, माफ कीजिएगा श्रोता, सनी देओल के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल चलिए आनंद लेते हैं इस गीत का फिल्म बेताब से।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

तो श्रोता एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे आपको कि आप हमारे साथ आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का, और इस दौरान आज हम बातें कर रहे हैं सनी देओल जी के बारे में। दोस्तों, सनी पारिवारिक इंसान है, संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। सनी देओल फिल्मी पार्टियों से अक्सर दूर रहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इन पार्टियों में सारे लोग बनावटी होते हैं और झूठ बोलते हैं, ऐसा उनका कहना है। शराब और सिगरेट से सनी बिल्कुल ही दूर रहते हैं। सिल्वेस्टर स्टेलिन को सनी देओल बेहद पसंद करते हैं और रेनबो सीरीज की फिल्में उन्हें बहुत पसंद है। सिल्वेस्टर स्टेलिन से ही प्रेरणा लेकर उन्होंने अपनी बॉडी बनाई। सनी ने उस दौर में अपनी बॉडी बनाई जब आमतौर पर हीरो पतले दुबले हुआ करते थे। उनका मजबूत शरीर देख ज्यादातर उन्हें एक्शन रोल निभाने को मिले और उन्हें भारत का आर्नोल्ड भी कहा जाता था। सनी को बॉलीवुड के बेस्ट एक्शन हीरो में से एक माना जाता है। बेताब के बाद सनी की कई फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन अर्जुन, दकेत, यतीम जैसी फिल्मों में उनका अभिनय काफी सराहा गया। पाप की दुनिया से उन्हें दोबारा सफलता मिली और फिर उन्होंने त्रिदेव, वर्दी जैसी कुछ हिट फिल्में की। 1990 में प्रदर्शित घायल ने सनी के करियर में अहम मोड़ निभाया।

फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय के बल पर स्पेशल जूरी अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता। सनी को जब घायल में शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो धर्मेंद्र बहुत खुश हुए, क्योंकि धर्मेंद्र यह पुरस्कार जीतने में कभी कामयाब नहीं रहे।

श्रोता चालबाज फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार गीतों और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बता दें आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायलेक्ट न्यूज और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर तुरंत निशी डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: नमस्कार दोस्तों, नेसी डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए दोस्तों, मनोरंजन के इस सिलसिले को और भी आगे बढ़ाते हैं, आनंद लेते हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: दोस्तों, हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का पहला गीत हम पेश कर रहे हैं आपके लिए सर्कस फिल्म से पापोन और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

Listen up, yo. It's Valentine's Day. Groove.

0: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: Attention! Pare Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने, तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए दोस्तों, अब समय हो चला है स्थानीय गीतों पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत का। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम अपना गीत का।

0: Get attractive offers up to rupees 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
1: नमस्कार मेरे प्यारे श्रोता मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। जी हाँ, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आपके रेडियो साथी गैर अत। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीत। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कार्यक्रम अपना गीत, और पहला गीत हम सुनते हैं पादी तादा की आवाज में अपतन गीत।

मोहब्बत की खूबसूरती ये भी है कि आप एक दूसरे से कितने भी दूर रहो, अलग रहो, फिर भी उनके लिए मन में अच्छी सोच रखना, उनके साथ बिताए पलों को याद कर खुश होना। अपना गीत कार्यक्रम का अगला गीत विरह में तड़पता प्रेमी का दर्द है, जो उन वादियों में आज अकेला है जहां अपनी प्रेमी के साथ वे कभी हसीन वक्त बिताया करते थे। तो चलिए सुनते हैं लम्युक लगो की आवाज में ये आदि गीत।

आप सुन रहे थे देशी जोंगलुजू और निहोन शोजू की आवाज में मेजी गीत। हमारे श्रोता मित्र सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जो आप तक पहुंच रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, कई बार हम किसी खास के लिए अपने परिवार जिंदगी तक को भूल जाते हैं, पर अगर वही खास अचानक हमारी जिंदगी से चली जाए तो। श्रोता लीजिए पेशे न्योगा म्योरा की आवाज में मायूसी से भरा एक गालो गीत।

0: वैसे हम इंसानों को एक न एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना तो है ही, पर अगर कोई हमारे बीच से जल्दी हमें छोड़कर चला जाए तो वे हमें तो दर्द के सागर में डालता ही है, साथ ही उनके अपने कई सपने और ख्वाहिशों को भी अधूरा छोड़ जाते हैं। श्रोता, ये सुनते हैं ये दर्द भरा निशे गीत बिजनू नावम की आवाज में, और हम यही चाहेंगे कि कोई भी समय से पहले या बहुत जल्द इस दुनिया को न छोड़े।
1: दोनी नगजी नाम नाग न्योद दोषी दल मृत नाम।

वांगदा द्वारा गाई इस संगीत के साथ अपना गीत कार्यक्रम का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह के एक और नए अंक के साथ हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरविंद FM 103.1 MHz। नमस्कार।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे स्थानीय गीतों पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और बता दूं आपको कि अब समय हो चला है कुछ पाश्चात्य संगीतों का। चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का।
1: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोता, अब समय हो चला है कुछ पुराने हिंदी फिल्मी गीतों का, तो चलिए आनंद लेते हैं कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत का।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

श्रोता, पुराने हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए बताना चाहूंगी कि पहला गीत आपने सुना सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से लता मंगेशकर के आवाज में, और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को दोस्ती फिल्म से।

0: जा रहा था नहीं आ रहा था नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़ आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय जय जय बजरंग बली।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे।

श्रोता, आप सुन रहे थे इस गीत को प्यार झुकता नहीं फिल्म से, और इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 MHz पर। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के ढेरों मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह 5:48 पर। तब तक के लिए स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम के साथ मुझे यानी कि आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामा को इस वक्त दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जिसके लिए चलिए आपको सीधा लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड पर।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। श्रोताओं, क्या आपने इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया है? अगर जवाब नहीं है तो आज का हमारा कार्यक्रम जरूर सुने। मैं फरहत नाज और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जहां हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। लोन चाहिए, वीजा चाहिए या फ्यूचर सिक्योर करना है, ITR हर जगह काम आता है। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा और तेज कर लीजिए और साथ में पेन पेपर भी जरूर रख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको देंगे ऐसे टिप्स जो आपका टाइम, पैसा और टेंशन तीनों बचाएंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए इसीलिए आज हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में संधि लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली जी को और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा जी को। आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार भरत, आपको और सभी लिसनर्स को मेरा अभिवादन।
0: तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। श्रोताओं, आज के अंक में हम समझेंगे कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0111-231-0481, 0111-231-1-7, 0111-231-4444। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ITR क्या है और किन किन लोगों के लिए भरना जरूरी होता है?
1: देखिए फरहत, इनकम टैक्स रिटर्न अभी जैसे आपने कहा कि आपको बहुत सारे फायदे पहुंचाती है, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। अगर आप इनकम कमाते हैं, पांच इनकम के सोर्सेस होते हैं, आप सैलरी से कमाते हैं, आप बिजनेस से कमाते हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं, आप कैपिटल गेन से कमाते हैं, आपने कोई मकान या शेयर्स बेचे हैं, या फिर एक जो रेसिड्यूअल सोर्स होता है जो बच जाती है इनकम, उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेते हैं। तो ये पांच सोर्सेस होते हैं और आयकर विवरणी इसको हिंदी में कहते हैं। अलग अलग कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और आजकल टैक्स फाइलिंग सीजन अपनी पीक पर है और करीब 11 दिन के आसपास बचे हैं। तो जिन लोगों ने अभी नहीं फाइल किया है, आज उम्मीद करता हूं आज आपकी और हमारी और अश्विनी जी की बातचीत सुनकर वो और जल्द फाइल करने के लिए मोटिवेट होंगे और उनके मन में अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए थोड़ी सी इनकम टैक्स का जो कानून है उसकी जानकारी जरूरी होती है अपनी इनकम, क्योंकि हर तरीके की इनकम फरहास अलग तरीके से टैक्स की जाती है, रेट तो एक ही होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो फोन करेंगे और उनके मन में कोई जरूर बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं वही बताना वाजिब समझूंगा जो लोग जहां पर वो अटक गए हैं, जहां उनको डाउट है।
0: जी, और आपने जैसे ही बताना शुरू किया हमारे पहले लिसनर भी हमसे जुड़ गए हैं, रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयकर रिटर्न किस श्रेणी के व्यक्तियों को जो है भरने का प्रोसीजर है, उनकी योग्यता है, और इसको हमें विस्तृत ढंग से बताएं।
1: देखिए रामाशंकर जी, आयकर रिटर्न जो है उन लोगों को भरनी होती है। दो प्रकार की रिजीम होती हैं आजकल जो ऑप्शन दी जाती है टैक्स पेयर को, या आप ओल्ड रिजीम में है जहां पर 2.5 लाख रुपए की मिनिमम लिमिट होती है। अगर आप न्यू रिजीम चूज करते हैं, आप मुझे आवाज से हमारे वरिष्ठ माननीय नागरिक लग रहे हैं, और 4 लाख रुपए वहां शुरू होता है न्यू रिजीम में, और आपकी इनकम अगर 4 लाख से ऊपर, आपको ये भी पता होगा कि अब तो 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको रिबेट मिल जाता है और टैक्स नहीं लगता। भारत सरकार ने जो बदलाव किए हैं, अब तो आयकर वालों को बहुत बड़ी छूट दी गई पीछे, तो 12 लाख रुपए तक तो टैक्स लगता नहीं है। तो ये तो आप थोड़ी सी हमें अगर डिटेल बताते, कुछ लोग क्या होता है फरहत के अपनी इनकम को सार्वजनिक रूप से बताते नहीं है, पर ये कार्यक्रम मुझे ऐसा है जैसे आप डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको अपने थोड़ा सा उसके बारे में, हालत के बारे में बताना पड़ेगा, तभी डॉक्टर बता सकते हैं। तो मैं सभी श्रोताओं

0: आपको ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा बजाय आप छुपाने के आप बताएं, जहां तक आप बता सकते हैं, तो उससे हमें जवाब देने में और सुविधा हो जाएगी।
1: जी शरद जी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइलिंग के लिए चाहिए होते हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा फरहद आपने। देखिए, ये जो पांच मैंने इनकम्स बताई थी, उन पांच इनकम से मान लीजिए आप सैलरी से कमाते हैं, तो आपका एक फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर देता है वो होना चाहिए। इसके अलावा आजकल जरूरी हो गया आयकर में अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल देना, तो मुझे लग रहा है वो बैंक अकाउंट अपने तैयार रखने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई इनकम आपकी सीधी बैंक में आ जाती है। और दो चीज जो मैं जरूरी बताना चाहूंगा, एक फॉर्म 26AS होता है, मैंने उसका नया नाम रखा है, वैसे तो 26AS कहते हैं, मैंने उसका नाम रखा है 26 आमना सामना, क्योंकि आपका आमना सामना हो जाता है अपनी अपने पूरी इनकम से, तो उसको जरूर चेक करें। और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम AIS कहते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन या एनुअल इनकम स्टेटमेंट होती है, उसका भी मैंने एक नाम रखा है, उसको मैंने लिखा आईना इसे समझिए, क्योंकि वो आपको दिखा देता है पूरा का पूरा कि आपने क्या क्या किया है साल भर में, कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई शेयर्स लिए हैं, कहीं और से आपकी इनकम आई है, तो ये दो डॉक्यूमेंट जरूर चेक करने चाहिए। इसके अलावा आप सैलरी है तो आपका फॉर्म 16 होगा, बिजनेस है तो आपको एक बिजनेस का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, कैपिटल गेन है आपने शेयर्स बेचे हैं प्रॉपर्टी बेची है उसका हिसाब किताब होना चाहिए, और आपने कोई किराए पे मकान दिया है तो किराएदार का पूरा पैन नंबर वगैरह होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट तैयार रखिए, ये सब। अब देखिए, इसमें जरूरी बात जो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि रिटर्न के साथ सारे कागजात दस्तावेज लगाने जरूरी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप कागज अपने पास रखें ही ना, आपके पास कागज होने चाहिए, क्योंकि कल को आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है, आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन और ये फिक्र कहां से ली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग भरपूर तैयारी में जुटे होंगे और वो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करेंगे।
1: बिल्कुल। अच्छा राम जी, आप बैंकिंग क्षेत्र से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड और FD पर अगर TDS कटता है तो ITR इसमें कैसे दिखाएंगे?
2: देखिए कि वैसे तो एक आपका TDS जो है FD के ऊपर वो 40,000 रुपए तक, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपका नहीं कटेगा, और सीनियर सिटीजन तो 50 की लिमिट है, लेकिन उसके बाद जो TDS है वो ऑटोमेटिकल, जैसे कोहली जी ने बताया कि आपकी फॉर्म्स 26A में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आप उसके अंदर उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, तो उसके ऊपर जो टैक्स टोटल होगा उसमें से वो रिड्यूस हो जाएगा कि ऑलरेडी 10% कट चुका है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो 10% कटेगा, पैन नहीं है तो 20% बैंक काटते हैं।
1: जी, और अभी कौन श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से अमित झा। जी अमित जी।
3: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार
3: सर, कोहली सर का नमस्कार। सर
0: नमस्कार अमित जी। नमस्कार
3: सर, मार्केट मंत्रा टीम में आते हैं सर आप?
0: अच्छा अच्छा, जी जी जी।
3: हाँ सैटरडे सर, मैं मेरा प्रश्न ये था, आज तो टैक्स से रिलेटेड है, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि हमारी इनकम ना सर, मतलब एक फिक्स नहीं है, जैसे हम कोई सरकारी एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि हमारी इतना सैलरी हो XYZ।
0: जी
3: तो सर, तो हमारी इनकम कोई मतलब एक फिक्स नहीं कर सकते, मान लीजिए किसी महीने 20,000 हो गया, मान लीजिए किसी महीने 25,000 हो गया, एक आइडिया बता रहा हूँ।
0: जी
3: तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि टैक्स स्लैब में हम नहीं आते, जो सरकार निर्धारित करती है 5 लाख वाले स्लैब पहला 1, 2, 3 में अगर हम नहीं आते हैं तो क्या हम भी टैक्स भर सकते हैं सर? क्या मतलब किस आधार पर हम टैक्स भरेंगे सर? धन्यवाद।
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है फरहद, और ये सवाल बहुत सारे श्रोताओं के मन में होता है, और मैं अमित के इस सवाल के जवाब में एक आंकड़ा देना चाहूंगा जो बताएगा कि जो अमित ने पूछा है वो कैसे। करीब 8 करोड़ से ऊपर साल में रिटर्न्स फाइल होती हैं, पिछले साल का मैं डेटा दे रहा हूं, पर उसमें से जिन रिटर्न्स में टैक्स असल में जाता है उनकी गिनती 2.5-3 करोड़ के आसपास होती है, हालांकि इस साल का डेटा तो अभी जुलाई के बाद निकल कर आएगा और बिलेटेड रिटर्न्स भी उसमें काउंट की जाती है। तो देखिए अमित, अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एक तो होता है जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब, जैसे मैंने बताया नए रिजीम में 4 लाख होता है, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख होता है, तो अगर आपकी उससे नीचे है फिर तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। परंतु अगर आपको जो 12 लाख रुपए तक का रिबेट मिलता है, अगर आप उस रिबेट के अंतर्गत आ रहे हैं और फिर आपके टैक्स नहीं आ रहा है तो फिर आपको फाइल करना चाहिए, या फिर आपका कोई TDS कट गया है पर वैसे टैक्सेबल है, मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट करी हुई है, डिविडेंड कहीं से आया उस पर टैक्स कट गया है और उसको आपको वापस लेना पड़ेगा बिकॉज आपका तो टैक्सेबल नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और रिटर्न फाइल जैसा फारद ने शुरू में बताया था कि आपको वीजा अप्लाई करना है, आपको कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, बहुत सारी जगह आयकर रिटर्न की जरूरत पड़ती है, तो बहुत से लोग मैंने देखा है कि उनको नहीं भी टैक्सेबल होता है तो वो फाइल कर देते हैं, पर टेक्निकली हम देखें तो उनको फिर जरूरी नहीं है। आप जो बता रहे हैं हमें, अगर आपका 12 लाख रुपए से कम का है तो आप 4 लाख से ऊपर है, 12 लाख से कम है तो आप फाइल करिए, पर अगर

0: 4 लाख से भी कम है तो फिर आप बेशक नॉन फाइलिंग केस कर सकते हैं यानी ले सकते हैं ऑप्शन।
1: शरद जी, छूट की बात हो ही रही है तो हम लोग क्यों ना सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए आईटीआर में कोई छूट है क्या?
0: पहले हुआ करती थी किसी जमाने में, अब तो सीनियर सिटीजन को नॉर्मल सीनियर सिटीजन के लिए कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलग होती हैं। और एक सीनियर सिटीजन के लिए यह होता है कि उनको जैसे एडवांस टैक्स पे करना होता है वो उनको नहीं करना होता अनलेस की वो बिजनेस इनकम है। कोई ऐसी विशेष सीनियर सिटीजन के लिए छूट नहीं है, कुछ स्पेशल डिडक्शन है जो सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ के हैं उनको बहुत जानकारी है आयकर के बारे में, और वो ज्यादातर सीनियर सिटीजन मैंने देखे कि वो स्वयं अपना रिटर्न कंपाइल करते हैं। और मैं तो आज शो के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि जितना मुश्किल आप इसको समझते हैं उतना मुश्किल ये है नहीं। और यही शायद आज आकाशवाणी में पब्लिक स्पीक का लक्ष्य भी है कि आपको आपके मन में कोई दुविधा है, कहीं आप फंस गए हैं, कहीं अटक गए, कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हैं तो आप दिल खोल के पूछिए और स्वतः इसको फाइल करें। ये जो सरलीकरण किया गया है पूरा, ये जो इसका सारा डिजिटल प्रोसेस किया गया, आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के आराम से फाइल कर सकते हैं। और बाकायदा रिटर्न का फॉर्म देखने में फर्क बहुत लंबा दिख सकता है।
1: ये बात एकदम सही कह रहे हैं, हर साल हम लोग भरते हैं लेकिन जब भरते हैं तब एक मन में संशय रहता है, डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना कुछ गलती हो जाए।
0: जी,
1: तो
0: जी। उस चीज़ और में मैं उसी पे आ रहा था। तो जो फॉर्म है उसके नीचे बकायदा एक मैनुअल की तरह सब इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। सिर्फ ये कि कुछ लोग थोड़ा सा उसको पढ़ने में कई बार आलस कर जाते हैं या घबराते हैं कि पता नहीं हमारे समझ आएगा कि नहीं, पर आपको हैरानी होगी जान के कि बहुत ही आसान है। आप उसको खुद करके देखिए और आपको खुशी होगी, आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगा कि मैंने स्वयं किया। जी
1: जी। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, मकसूद हुसैन जी। मकसूद जी
2: नमस्कार। सर जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मैं मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से।
0: जी हुसैन साहब बताइए।
2: जी मेरा सवाल ये था, मेरा लड़का जनसेवा केंद्र चलाता तो उस पर ना गांव के अंदर है जनसेवा केंद्र, तो उस पर जो है अंगूठे से जो है गांव के लोगों के जो है पैसे निकालता है
0: जी।
2: तो उसमें जो है कोई इनकम टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स जो निकालने का जो है साल भर में 20-25 लाख तक पहुंच जाता है जी। अगर इनकम टैक्स उस पर लगता है तो हम क्या करें, वो भी उपाय बताएं सर जी।
0: नहीं, जनसेवा केंद्र से आपने बताया हुसैन साहब कि वो पैसे निकालता है लोगों के अंगूठा लगा के, तो ये तो किसी और के पैसे निकालता है कि वो अपने लिए पैसे निकालता है? मुझे तो लगता है जैसे किसी और को मदद करता होगा, तो इसके बदले में उनको हुसैन साहब कोई फी वगैरह मिलती होगी। तो जो इनके इसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन मिलता है, फी मिलती है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो लोगों के पैसे वो 20-25 लाख रुपए साल के निकालते हैं अंगूठा लगा के, फर्द में ठीक समझ रहा होगा, तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा। पर उसके में आपको अगर कोई कमाई हो रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो आप हुसैन साहब या तो ये बताइए कि उनको आपके बेटे को कितनी कमाई हो रही है, ये लोगों के पैसे हैं आपके पैसे हैं? पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया। तो अगर अगर आप दोबारा कॉल करें या जब भी जुड़ेंगे तो ये जरूर बताइएगा। जी
1: जी बिल्कुल। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान जी। रशीद जी
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
3: मैं छतरपुर से मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है
0: जी,
3: तो क्या 13 लाख हो जाए या 13,50 हो जाए या 12,80 हो जाए, एक सेंटेंस एक शब्द आता है मार्जिन रिलीफ,
0: इसके
3: बारे में थोड़ा सा बता दें। दूसरा ये कि क्या न्यू रिजिम में सीनियर सिटीजन को बैंक इंटरेस्ट पर कोई छूट है या नहीं, प्लीज सर, थैंक यू।
0: अच्छा, तो सीनियर सिटीजन्स को पहले आपके मैं दूसरे वाले सवाल को लेता हूँ राशिद भाई, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स को आपने कहा बैंक इंटरेस्ट पे, तो एक सेक्शन पहले हुआ करता था 80TTB उसको कहते थे, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रिबेट होता था वो 50,000 तक होता था। तो आप राशिद भाई पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि जो ओल्ड रिजीम है वहां पर डिडक्शंस मिलती हैं इंटरेस्ट की, पर अगर आप राशिद भाई न्यू रिजीम में जाते हैं तो फिर उसमें चाहे सीनियर सिटीजन हो या ना हो कोई उसमें रिलीफ डिडक्शन उसमें अलाउड नहीं है। न्यू रिजीम को लाने का पर्पज ही यही है कि डिडक्शंस को हटा के आपके लिए जो स्लैब्स हैं उनको आसान बना दिया गया है। अब आपका पहला सवाल था कि 12,75,000 से थोड़ा भी ऊपर जाते हैं, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक स्टडी किया सुना, उसमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है, उसमें प्रो रैटा कैलकुलेशन करी जाती है। ऐसा नहीं होता कि सीधा 12,75 से आप 5,000 भी ऊपर हुआ तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, उसका मार्जिनल रिलीफ उसकी एक कैलकुलेशन है राशिद भाई। आपके जहन में जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है और वो उस रिलीफ को आप जरूर लीजिएगा। पर आपने बिल्कुल सटीक चीज पूछी है, बहुत बढ़िया चीज पूछी है फरहत इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ही होता
1: है। जी बिल्कुल। अच्छा राणा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और लोन लेना चाहते हैं, तो क्या आईटीआर के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट

0: ये होता है
1: नहीं, ITR के लिए उसको अगर जो भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको 10 नंबर चाहिए, पैन नंबर चाहिए, और बहुत सारे जैसे काम रहते हैं जिसके अंदर लाइसेंस चाहिए या कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए उसके लिए। तो इसलिए वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए आजकल GST भी जो है वो जरूरी हो गया है। कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो व्यापार कर रहे हैं तो GST चाहिए, पैन नंबर चाहिए, ये दो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है।
2: और मैं आपकी इजाजत हो फरहत तो इसमें कुछ अश्विनी इजाजत दें तो मैं ऐड कर दूं। क्या होता है कि दिक्कत होती है जब कोई अपने नाम से काम शुरू करने जा रहा है तो बैंक वाले उसका अकाउंट ही नहीं खोलते हैं कि भाई हमें कोई प्रूफ चाहिए। तो ऐसे में एक हल निकला है, हल ये निकला है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन एक होता है जिसके अंदर MSMEs को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को उद्यम कैटेगरी में ला के और वहां पर वो रजिस्ट्रेशन करा के, तो इसमें बैंक अकाउंट एक प्रूफ ऑफ एड्रेस एक रजिस्ट्रेशन बन जाता है। GST भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर उसमें क्योंकि अगर आप मर्चेंडाइज में डील कर रहे हैं बड़े शहर में तो 40 लाख रुपए तक का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है, तो कुछ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन GST शुरू में लेने में हिचकिचाते हैं। जब छोटा काम होता है, जैसे जैसे काम बढ़ता है, तो बिल्कुल पैन नंबर का आपने ठीक बताया, पैन नंबर और उद्यम का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं।
1: लेकिन बैंक वाले, आप कॉलेज बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन बैंक में आप जाओगे करंट अकाउंट खोलने के लिए तो वो GST नंबर पहले कहेंगे, उनको ये समझाना और बताना वो मतलब बहुत ज्यादा एडमेंट होते हैं। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई इस लिमिट तक उसको GST की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक प्री कंडीशन बता दे।
2: बैंकिंग महकमे से आते हैं, मुझे लगता है आप बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं।
0: आप लोगों से हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक और लिस्टर हमारे साथ जुड़ गए तो उनका प्रश्न ले लेते हैं। नागपुर से NP सिंह जी।
3: सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मेरा नाम NP सिंह है, मैंने एब्रीवेशन बताई थी नागपुर।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
3: शरद जी, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली।
2: अच्छा, प्लेजर सर।
3: एज अ डॉक्टर आई नीड अ प्रिसाइज आंसर। एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, दूसरा थोड़ा लेंथी है।
2: जी।
3: पहला ये है कि स्क्रूटनी में किन लोगों की आती है, अनियमितता को छोड़कर, ये लॉटरी सिस्टम होता है। दूसरा, आई एम सो सॉरी, अच्छा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या फर्क है, मोटी मोटी बातें बता दें ताकि हम उसका ध्यान रखें।
2: अच्छा,
3: और कौन सी ऑप्शन बेटर
2: जी? आपने स्क्रूटनी का पूछा, मैं क्योंकि कुछ श्रोता नए होंगे जिन्होंने ये शब्द नहीं सुना हुआ है। स्क्रूटनी का मतलब होता है, एक सिस्टम होता है इनकम टैक्स में, उसको हम कैस बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम होता है। तो उसमें जो AI आजकल सॉफ्टवेयर आयकर विभाग यूज करता है, उसमें जिन लोगों की, मैं कुछ एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे जिन लोगों की आय सडनली एक साल में गिर जाती है, फरहद आप ध्यान दे रहे हैं, तो उनका फिर एकदम से वो उठा लेता है, या किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा लॉस किया है तो वो एकदम से ध्यान अपनी तरफ खींचता है। आपने कुछ और गलती, आप बार बार रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, ये भी तो ये कुछ ग्राउंड होते हैं। आपने सिंह साहब बहुत रास की बात पूछी है, तो मैं कुछ कुछ आपका जिक्र कर रहा हूं। और दूसरा आपने पूछा ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, देखिए ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम में फर्क है। पहली बात तो दोनों रिजीम सभी टैक्स पेयर्स के लिए खुले हुए हैं, ये सभी श्रोताओं के काम की बात है। जो ओल्ड रिजीम है उसमें जब सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो वो उन लोगों के लिए जिनका डिडक्शंस को मिला के, डिडक्शंस को लेने के बाद टैक्स कम आता है। पर अब एक डेटा ये कहता है, और मेरा अपना आकलन ये था कि करीब 75% टैक्स पेयर्स को अब न्यू रिजीम सूट कर रही है अब की बार, जो जैसा लोग बता रहे हैं। तो न्यू रिजीम उनके लिए है जिनको डिडक्शंस नहीं लेनी है, कोई एग्जेम्पशंस नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से रिटर्न, कुछ बहुत थोड़ी सी डिडक्शंस, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है NPS उसको छोड़ के, बाकी सारी डिडक्शन न्यू रिजीम में हटा दी गई है। तो मैं सलाह ये दूंगा सिंह साहब आपको कि जो भी, और सभी को, कि जो भी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम इधर जाएं कि उधर जाएं कि दुविधा में फंसा हुआ है, उसके लिए आयकर पोर्टल पर ही एक कैलकुलेशन की ऑप्शन है कि आप अपने इनकम को ओल्ड रिजीम में डाल के देखें, न्यू रिजीम में डाल के देखें, जहां पर कम टैक्स आता है उसको आप चूज कर लें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि एक साल आपने ओल्ड रिजीम ली तो अगले साल आपको फिर हमेशा ओल्ड रिजीम ही लेनी है, आप स्विच भी कर सकते हैं। सिर्फ बिजनेस इनकम जिनकी है उनको ये सुविधा एक ही बार दी जाती है कि वो इस पाले से उस पाले में जा सकते हैं, पर बाकी की इनकम से है तो हर साल आप ओल्ड और न्यू रिजीम के बीच में सिंह साहब चॉइस रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मोटा लंबा डिस्कशन है और भी क्योंकि कॉलर्स हैं, तो मैं थोड़ा सा क्रिस्प रहने की कोशिश कर रहा हूं।
0: अश्विनी जी भी कुछ कहना चाहते हैं?
1: मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में, जैसे कोहली जी ने कहा कि ओल्ड रिजीम में बहुत सारी डिडक्शंस मिलती थी, तो उसके लिए लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे LIC में, NSE में, FD है या इस तरह की, तो वो या PPF है, वो न्यू रिजीम में भी वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, वो उसका बेनिफिट ना लें फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग जो है वो एक आपके लिए अच्छी जरूरत है।
0: बिल्कुल, बैंकिंग क्षेत्र और आयकर विभाग जो एक तरीके से जुड़ गया है आज, तो तीखी जो नोकझोंक है वो हम लोग कर रहे हैं। और एक और प्रश्न हम ले लेते हैं शिमला से राकेश जी का। जी राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला से बात कर रहा हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि जो जो हमारे जो भारतीय नागरिक है विदेश में जाते हैं, लेकिन विदेश से जो है अपने परिवार को पैसा भेजता है, तो क्या वो भी क्या बोलते आयकर रिटर्न भर सकते हैं, और मेरा ये प्रश्न है।
2: देखिए राकेश जी, जो विदेश में नागरिक जाते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, तो वहां पर अगर कमाई है और अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इसमें आयकर विभाग में दो तीन कैटेगरीज दी हुई हैं, एक को हम NRI कहते हैं, एक को हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं, और एक को हम रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं। तो इसमें कैटेगरी होती है, पर आपके सवाल से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये शख्स जो है भारत से बाहर ही रहते हैं पर वो पैसा अपने परिवार को यहां पर भेजते हैं, तो खाली पैसा भेजना राकेश जी टैक्स नहीं लगेगा उस पर। हाँ, उस पैसे को भेजने के बाद जिस भी परिवार मेंबर को वो इनकम मिली है, उसको जब वो कहीं निवेश करेंगे उससे जो इनकम होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा, पर उस व्यक्ति को जो NRI है उसको केवल भारत में भेजने पर टैक्स नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि 180 दिन अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह जाता है तो वो टेक्निकली फिर नॉन रेजिडेंट हो जाता है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कई सारी राकेश जी बारीकियां हैं कि मान लीजिए वो उसकी यहां पर भी इनकम है फरहद, वहां पर भी इनकम है, तो फिर दो देशों के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी होती है जिससे उसको डबल डबल टैक्स ना देना पड़े। पर आपने जो पूछा था मुझे लगता है मैंने उसका जवाब दे दिया है।
0: जी अच्छा, एक और प्रश्न मेरे पास आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। संजीव जी NGO चलाते हैं और पिछले 2 साल से उन्होंने अपना रिटर्न नहीं भरा है, लेकिन वो अब लॉस की वजह से NGO को क्लोज करना चाहते हैं, तो जब वो क्लोज करेंगे तो क्या उनके लिए जो पिछला रिटर्न है वो मतलब भरना जरूरी हो जाएगा?
2: देखिए अगर तो NGO रजिस्टर्ड है और सरकारी तरीके से रजिस्टर्ड है फिर तो भरना पड़ेगा। हो सकता है उनसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि NGOs फर्क दो तरीके के होते हैं। एक NGO होते हैं जिन्होंने आयकर के अंतर्गत एग्जेम्पशन ली हुई होती है, क्योंकि NGO आप मुनाफे के लिए तो काम करते नहीं है, आप तो जन सेवा के लिए करते हैं, तो उनको फिर आयकर के अंतर्गत एक अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके एग्जेम्पशन लेनी पड़ती है। अगर उन्होंने ये ली हुई है फिर तो इनको फाइल करनी पड़ेगी, पर अगर वो आयकर में अनरजिस्टर्ड NGO हैं तो फिर हो सकता है बिना उसके भी वो उसको रैप अप कर पाए। और मैं ये जानकारी दे दूं, आपके सवाल से एक बहुत जरूरी सवाल निकलता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं हमने 3 साल से फाइल ही नहीं करी, तो अब क्या होगा, क्या हम फाइल कर सकते हैं, गलती हो गई रह गई जाने में अनजाने में? तो उनके लिए आयकर में एक नया प्रावधान किया गया जिसको हम ITRU कहते हैं, ITR अपडेटेड, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। पर उसमें शर्त यह है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी पिछले साल से, 3 साल की कर सकते हैं, पिछले साल से कम 25%, 2 साल पुरानी है तो 50%, 3 साल पुरानी तो 60% ज्यादा इनकम अगर आप डिक्लेयर करेंगे तब आपको सरकार ये इजाजत देगी कि आप पुरानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वरना पुरानी रिटर्न फाइल नहीं होती है। और वो फिर कंपलसरी, जब अगर ऐसी इनकम पकड़ी जाती है तो उसको फिर हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कैटेगरी में लाके उनको नोटिस वगैरह, थोड़ी सी फिर मुसीबत का सबब बन जाता है।
0: शरद जी प्रश्नों का दौर जारी है, एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, प्रकाश जी। जी प्रकाश जी।
5: भरत जी आपको दोनों विशेषज्ञों को सह प्रेम नमस्कार, प्रकाश जांगड़ बोल रहा हूँ जयपुर के।
2: सर हमारा भी सब प्रेम,
0: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
5: सर सीधा सवाल मेरा राणा जी से है।
2: जी
5: राणा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग आदमी है और वो अपना छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहता है, छोटा उद्योग जैसे क्या कुटीर उद्योग बोलते, तो उसमें बैंक में क्या सुविधा एक आम जन के और दिव्यांग के बीच कोई फर्क है या क्या, थोड़ा सा इस पर स्पष्ट करें।
1: नहीं, वैसे मेरे हिसाब से दिव्यांग के लिए कोई ऐसी कोई अलग कैटेगरी नहीं है, लेकिन उनको वो सुविधाएं देते हैं, मतलब एडिशनल वो कुछ जो अगर लोन लेना चाहते हैं या इस तरह कोई भी व्यापार करना चाहते हैं उस तरह का उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है बैंक के अंदर कि भाई वो उस कैटेगरी में लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको कोई फैसिलिटीज मिलती हूँ एडिशनल वैसा कुछ नहीं है।
0: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है द्वारका से रमेश जी का। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल फाइलिंग ITR दैट लीड टू इनकम टैक्स नोटिसेस?
2: हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा है। बहुत गलतियों की, कहते हैं सबसे आसान काम दुनिया का फर्द होता है किसी की गलतियां निकालना, और आपने तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया। देखिए, आपने पैन नंबर गलत डाल दिया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, आपने अपने सबसे बड़ी गलती होती है अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत डाल दिया, तो वहां तो आपको रिफंड आना होगा, तो रिफंड ही आपका नहीं आएगा। इसके अलावा आपने इनकम गलत हेड में डाल दिया, और आपने क्या किया, रिटर्न भरते टाइम वेरिफिकेशन नहीं किया, बहुत लंबी फेरिस्ट है गलतियों की।

0: तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपको लग रहा है कहीं आप गलती कर रहे हैं, जिन भी जिन्होंने भी ये होदय ने सवाल पूछा है, तो हमसे आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए
1: जी
0: जहां आपको अंदेशा हो रहा है कि मुझसे गलती हो, क्योंकि गलती की लिस्ट सारा इतनी लंबी है कि फिर बाकी का सारा समय हम गलतियां को बयान करने में चला जाएगा।
1: बिल्कुल नहीं, हम समय अपना
2: मैं
1: जाया
2: ऐड
1: नहीं
2: करूंगा
1: जाने
2: इसमें एक
1: जी
2: कि कुणी जी, अगर वो मैनुअल भर रहा है तो उसको समस्या आएगी, लेकिन अगर ऑनलाइन वो आजकल बहुत इजी है रिटर्न भरना, वो भरता है और कहीं गलती करता है तो उसकी सबमिट नहीं होती, अप्रूव नहीं होती,
0: नहीं,
2: तो
0: उसमें उसमें राणा जी ये होता है कि कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली ठीक करता है पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो नहीं भी ठीक करता
2: नहीं
0: है।
2: ठीक करता, और वह फिर वो उसको आपको अप्रूव या सबमिट नहीं करने देता।
0: नहीं नहीं वो हो जा, मान लीजिए मैंने फिगर ही अपनी गलत भर दी
2: हाँ,
0: इनकम
2: फिगर
0: की,
2: गलत है लेकिन
0: तो
2: जैसे अकाउंट नंबर गलत है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उस गलती को वो बताता है कि ये नंबर जो है जाके आप
0: काश ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं, पर उसमें उसमें बहुत सारी चीजें गलत चली जाती हैं और फिर वो 26AS बिना देखे फाइल कर दिया, AIS बिना देखे फाइल कर, मैंने कहा ना गलतियों की लिस्ट बहुत
1: हाँ,
0: लंबी है।
1: ध्यान से भरिए अपनी
0: जी
1: हर एक एक चीज, डॉक्यूमेंट सही तरीके से रख के एक एक चीज डिटेल सही से डालिए तो शायद आप गलती करने से बच जाएंगे। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, अक्षय कुमार जी। अक्षय जी
3: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार
3: पैनल को नमस्ते।
0: नमस्कार
3: सर, पिछले साल जिस यूजर आईडी जो वो तो यूजर आईडी से ही होता है, जिस पासवर्ड से हम भरे थे वो पासवर्ड इस बार जब हम भर रहे हैं तो इसमें लिख के आ रहा है कि ये पासवर्ड गलत है। मैं एक दो बार ट्राई किया तो लिख के आ गया कि आपका लॉक कर दिया गया,
0: तो
3: अनलॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए जब हम उसमें ट्राई कर रहे हैं तो बोल रहे हैं आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है, जबकि मैं कई सालों से भर रहा हूँ, रेगुलर आईटीआर भरने वाला।
0: तो अक्षय जी इसमें ये कर सकते हैं आप, वैसे तो फॉरगॉट पासवर्ड का उसमें ऑप्शन होता है जैसे आम होता है, और आपका हो सकता है कि मोबाइल नंबर, नहीं तो तुरंत मोबाइल पे ओटीपी आता है और उसके जरिए आप कर सकते हैं। आप क्योंकि आप फंस गए हैं यहाँ पर, वो भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा एक सीपी ग्राम्स करके वेबसाइट है उसमें आप ये तुरंत कंप्लेंट डालें, और सीपीसी बैंगलोर है उसके फोन नंबर भी है, क्योंकि अब समय कम है, वैसे तो बहुत जल्दी उसकी सुनवाई होती है, तो सीपी ग्राम्स का एक ई निवारण पर, ई निवारण के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए सीपी ग्राम्स में आप जाके डालें, अपना पैन नंबर दें, अपना नाम बताएं और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताएं, तो आपके ऊपर तुरंत कॉल आएगा, या मैं आपको सलाह दूंगा सीपीसी बैंगलोर में फोन नंबर उसका ऑनलाइन दिया हुआ है, आप निकाल के उसको फोन करें, क्योंकि ये तो आप फंस जाएंगे, समय कम है, 11 दिन बचे हैं, पता लगा कि इनका अक्षय जी का जो है मामला अटका रह गया, तो हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर पेनल्टी लगे।
1: जी शरद जी, हमारे पास भी समय बहुत कम है तो इसीलिए हम लोग एक और लिसनर का जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं, हरिद्वार से रवि जवालिया जी। जी रवि जी।
4: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
4: जी, मैं रवि जवालिया हरिद्वार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करो कोई बंदा मतलब इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, तो वो 2-3 साल तक नहीं भर रहा है, तो उस पर क्या गवर्नमेंट क्या पनिशमेंट देगी? सर सर मैं जानना चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
0: अरे अरे रवि जी, आप क्यों क्यों नहीं भर रहे हैं आप, पहले तो ये है, पर चलिए आपने पूछा है तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। बहुत तो उसमें सख्त पेनल्टी का प्रावधान होता है, उसमें आपके ऊपर टैक्स इवेजन का, मतलब आपकी अगर 12 लाख से ऊपर है आप नहीं भर रहे हैं तो टैक्स इवेजन का शक आपके ऊपर बैठ जाएगा, पेनल्टीज बहुत भारी है। मैं पेनल्टीज बता के फरहद इनको डराना नहीं चाहता हूं, पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब जागे तब सवेरा, अब जितना हो गया सो हो गया, इस साल से आप फाइल करिए, और पिछले 2 सालों की भी आप रवि आप ITRU जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ITR अपडेटेड फाइल कर सकते हैं, थोड़ा सा टैक्स फालतू जाएगा, कम से कम पेनल्टी से आप अपने आप को बचा पाएंगे।
1: जी, और अब थोड़ा सा समय बचा है तो हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि अपने श्रोताओं से एक अपील आप करें।
0: बस मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि पहली तो मैंने जो बोला उसको दोहराना चाहूंगा कि खुद फाइल करने की कोशिश करें और समय पे फाइल करें, सारे अपने कागजात अपने सामने रख के फाइल करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले एक दफे उसको दोबारा चेक कर लें, और सबसे जरूरी बात 26AS और AIS को एक दफे वेरीफाई कर लें। ऐसा तो नहीं वहां कोई एंट्री है जो आप नहीं दिखा रहे हैं, या कई बार AIS में फर्क ऐसी एंट्री आ जाती है जो आपकी होती नहीं है, किसी ने पैन नंबर गलत डाल दिया किसी और के, तो वहां पर फीडबैक का ऑप्शन होता है, तो 26AS और AIS को बिल्कुल ना भूलें। और एक जरूरी बात जल्दी से बता दूं, ऑटो फिल्ड रिटर्न आ रही है आजकल अपने आप भरी हुई, उसमें आप उस पर आंख बंद करके यकीन मत करिए, एक दफे उस इंफॉर्मेशन को चेक जरूर कर लें।
1: बिल्कुल अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल, और इसको हम इग्नोर नहीं करें और वेट नहीं करें, 31 जुलाई के बाद एक्सटेंड होगा, यानी डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड हो ना हो आप 31 जुलाई लास्ट डेट मान के जो है रिटर्न भरी है।
1: जी, और अगर कोई सवाल हो तो आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी दोनों मेहमानों का कि आपने अपना कीमती समय निकाला और

0: आप स्टूडियो में मौजूद रहे और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब
1: दें। शुक्रिया।
0: और इसके साथ ही मुझे भी दीजिए इजाजत। और हमने सीखा आज की आईटीआर सिर्फ टैक्स का कागज नहीं है, ये आपकी आर्थिक पहचान भी है, तो जरूर भरें, टाइम से भरें। और इसके साथ ही फरहत नाज को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।

0: कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
2: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्त संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धनपालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर वन, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
3: प्रश्न नंबर एक।
4: प्रश्न संख्या एक, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख, क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग, उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ, ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग, क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
5: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के ढोडिया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है?
6: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे?

0: मोदी जी ने 5 बहन लिलवाते हुए देश को कहा था तुम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण लिलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी। तो तीसरा प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि युवा सबसे प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है। ये मैन्युस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैन्युस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुके हैं और उसमें से 3,74,000 मैन्युस्क्रिप्ट आज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी उसको भी वो सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
1: सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको प्रयास में दूंगा, अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तथ्या लेराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
3: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा।
4: इंडिया ऑल्सो ऑफर्स गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर मोल्डोवन कंपनीज फॉर ट्रेड एंड बिजनेस। वी रिमेन कमिटेड टू फॉस्टरिंग ए ट्रांसपेरेंट, प्रेडिक्टेबल एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस एनवायरमेंट। आई इन्वाइट मोल्डोवन बिजनेसेस टू कम एंड एक्सप्लोर इंडिया। आई ऑल्सो एनकरेज इंडियन बिजनेसेस टू लुक एट द अपॉर्चुनिटीज इन Your enterprise, vision and commitment will be instrumental in building enduring economic partnerships.
3: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनाव में स्टेफान सेल मारिसे स्पैंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले राष्ट्रपति ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। राष्ट्रपति मुर्मू ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पनामा के

0: ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहैम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने उद्घाटन भाषण में बर्नहैम ने कहा कि वे राजनीति को समस्या समाधान पर केंद्रित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनकी नियुक्ति देश के लिए एक निर्णायक क्षण साबित हो।
1: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: प्रधानमंत्री बर्नहैम ने जनता को संबोधित करते हुए लोगों से राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में औपचारिक कार्यभार संभाला जब चार्ल्स तृतीय ने केयर स्टारमर के इस्तीफे के बाद उन्हें नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले केयर स्टारमर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया। यमन के ईरान समर्थित हूती द्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी लगाने की घोषणा की है। हूती सैन्य प्रवक्ता याहया सारी ने कहा कि यह कदम यमन पर लगाए गए प्रतिबंध और हाल में सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले के जवाब में उठाया गया है। इस घोषणा से बाबल मंदेब जलडमरू मध्य में व्यवधान की चिंता बढ़ गई है। यह समुद्री मार्ग लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है और वैश्विक व्यापार के लगभग 12% हिस्से के लिए महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब ने अभी तक इस घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईरान और अमेरिका के बीच हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के कारण लगातार 9वें दिन भी हमले जारी हैं। अमरीकी हमलों में दक्षिण पश्चिम ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया गया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की जानकारी दी है। ईरान ने बताया है कि अमरीकी हमले के कारण बुशहर प्रांत के दश्ती काउंटी के प्रशासनिक केंद्र खोरमोज में बिजली गुल हो गई। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना बलों से संबंधित सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। जॉर्डन ने बताया कि वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान की 3 मिसाइलों को नाकाम कर दिया। इन मिसाइलों का लक्ष्य दक्षिणी जॉर्डन के तटीय शहर अकाबा में अमरीकी सैन्य विमान थे। इस बीच अमरीकी युद्ध विभाग ने पिछले सप्ताह ईरान के साथ संघर्ष में मारे गए 2 अमरीकी सैनिकों की पहचान की पुष्टि की। सेना के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से मारे गए अमरीकी सैनिकों की कुल संख्या 17 हो गई है। यूक्रेन ने मॉस्को पर 400 से अधिक ड्रोन के साथ हमला किया। यह हमला रूस के द्वारा कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हमले के कुछ घंटों बाद हुआ। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोबेव के अनुसार हमले में 10 लोग घायल हुए और कई रिहायशी इमारतों तथा नागरिक ठिकानों को नुकसान पहुंचा। मुंबई की एक विशेष अदालत ने आज समुद्री डकैती और अन्य अपराधों के आरोप में 2 अलग अलग मामलों में सोमालिया के 44 नागरिकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की। न्यायालय ने कहा कि आरोपियों के अपराध गंभीर प्रकृति के थे। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष सेट्टी और एचएस प्रणय टीम का हिस्सा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी को सशक्त बनाने का आह्वान किया। उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ वार्ता की। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता एंडी बर्नहैम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।